सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार दिनांक 27 मई वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श

0: सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आज की सुबह को पावन बनाने के लिए हम सबसे पहले उस धरा को नमन करते हैं जिसने हमें जीवन दिया। राष्ट्र की वंदना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है, क्योंकि देश से बढ़कर कोई मंदिर नहीं। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं आज की यह ओजस्वी प्रस्तुति।

इस राष्ट्रभक्ति के गीत ने हमारे भीतर अपनी माटी के प्रति गौरव और ऊर्जा को जगा दिया। आइए हम इसी पवित्र ऊर्जा को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए सुनते हैं आज का ये पहला दिव्य भजन।

ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो हर अशांत मन को स्थिरता दे देती है। प्रभु की शरण में आकर ही जीव को सच्चा संबल मिलता है। इसी भाव को शब्दों में पिरोती प्रस्तुत है अगली मधुर रचना।

सुरों का यह संसार सीधे आत्मा को छू रहा है। जब सुर और श्रद्धा एक हो जाते हैं तो परमात्मा दूर नहीं रहता। आइए भक्ति रस के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए डूबते हैं अगले भजन के आनंद में।

समर्पण और अटूट विश्वास ही एक सच्चे भक्त की पहचान है। जहां पूर्ण समर्पण है वहां ईश्वर की कृपा स्वतः बरसने लगती है। सुनिए श्रद्धा से सरोबार यह सुंदर प्रस्तुति।

तो श्रोताओं, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था दोनों ही हमारे जीवन के मजबूत स्तंभ हैं। हमारी यह निष्ठा हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वंदना को हम विराम दे रहे हैं। नमस्कार।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। और लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है किंशुक चौहान का और वाचक स्वर है मुकाम सिंह चौहान के।
1: जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन चुनौतियों से घबरा जाते हैं, जबकि कुछ इन्हें अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। चुनौती वास्तव में एक परीक्षा है, हमारे धैर्य की, हमारी क्षमता की और हमारे आत्मविश्वास की। जब जीवन में सब कुछ सरल और सहज होता है, तब हमारी वास्तविक ताकत का पता नहीं चलता। लेकिन जब कठिनाइयां सामने आती है, तभी हमारे अंदर छिपी शक्ति जागृत होती है। जरा सोचिए, यदि जीवन में कोई चुनौती ना हो तो क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? क्या हम कुछ नया सीख पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि चुनौती ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें हमारे आराम के क्षेत्र से बाहर निकालती है और हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए मजबूर करती है। हर बड़ी सफलता के पीछे अनेक संघर्ष और चुनौतियां छिपी होती है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर चुनौती को अपनी ताकत बना लिया। चुनौती का सामना करने के लिए सबसे आवश्यक है सकारात्मक सोच। जब हम किसी समस्या को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वह हमें और अधिक कठिन लगने लगती है। लेकिन यदि हम उसी समस्या को एक अवसर के रूप में देखें, तो हमें उसमें समाधान के रास्ते नजर आने लगते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वही समय होता है जब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि अंधकार के बाद ही उजाला आता है और कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है। यह भी याद रखना चाहिए कि चुनौती हमें मजबूत बनाती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। हम अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और अधिक आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हमारा संकल्प मजबूत है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। कभी कभी हम असफल हो जाते हैं और यही असफलता हमें निराश कर देती है, लेकिन असफलता भी एक प्रकार की चुनौती है जो हमें सिखाती है कि कहां हमसे गलती हुई। यह हमें बेहतर बनने का अवसर देती है, इसलिए असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखना चाहिए। आत्मविश्वास भी चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो, तो छोटी सी समस्या भी हमें बड़ी लगने लगती है। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना चाहिए, अपने अंदर यह विश्वास जगाना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हमें सफल नहीं बना सकता। चुनौती हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर सफलता हमें उसी मोड़ पर मिलती है जहां हम हार मानने का सोचते हैं। यदि हम उस समय थोड़ा और प्रयास करें, तो शायद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। यदि हम उन्हें बोझ समझते हैं, तो वह हमें दबा देंगी, लेकिन यदि हम उन्हें अवसर मानते हैं, तो वे हमें आगे बढ़ाएंगी। चुनौती हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब हमें अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, तभी हम उस चुनौती से बाहर निकल सकते हैं। आज के इस तेजी से बदलते युग में चुनौतियां और भी अधिक बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही अवसर भी उतने ही अधिक बढ़े हैं। जो लोग इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वही लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों से कभी घबराए नहीं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि चुनौती ही विजय की प्रथम सीढ़ी है।
0: अभी सुन रहे थे आप आज का चिंतन। आलेख था किंशुक चौहान का और वाचक स्वर थे मुकाम सिंह चौहान के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
0: ये आकाशवाणी इंदौर है, लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज का विषय है निमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इस विषय पर जानकारी दे रही है तुलसा दरगैया।
4: किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों ने जो प्राकृतिक खेती रहे, जो काशी जमीन को स्वास्थ्य मजबूत रहे, न कभी जमीन स्वस्थ रहेगा तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा, न उनमें कीट बीमारी, न मौसम की विपरीत स्थिति, न सी लड़ने की क्षमता आई जाए। एक ही खेती का लेना कोई भी बीज हमका बाजार से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जेका से हमका लागत भी कम लगत, न जो पैदावार छे वो भी विषमुक्त रहे। तो भाई नोनी आज हम बात करांगा निमास्त्र ब्रह्मास्त्र न अग्नि अस्त्र का बारे में। सबसे बात पहले बात करा निमास्त्र का बारे में। निमास्त्र रस चूसने वाला कीट न छोटी सूखी इल्ली न का नियंत्रण का लेना उपयोग में आवत। एक आलन हमका सामग्री लगेगा नीम की हरी पत्ती न निम्बोड़ी 5 किलो, गोमूत्र 5 लीटर, देसी गाय को गोबर 1 किलो। सबसे पहले नीम की पत्ती या फल न का कूटी न 100 लीटर पानी में डाला। साथज गोमूत्र न गोबर मिलई न लकड़ी सी दिन में 2 बार घोला नौख 48 घंटा तक ढकी न रखी देवा न घोल ख छानी

0: एक एकड़ फसल पर हम छिड़काव करा जेका सी हमारा खेत में जो भी रस चूसने वाला कीट ये जो इल्ली न छे ना उको नियंत्रण हुई जाए। अब बात करा ब्रह्मास्त्र की तो ये भी बड़ा जो कीड़ा मकोड़ा छे उनकी रोकथाम का लेना गोमूत्र न वनस्पति पत्ता नसी तैयार हो एका लेना हमका सामग्री लगागा देसी गाय को गोमूत्र 10 लीटर नीम सफेद धतूरा सीताफल करंज अमरूद अरंडी पपीता मसी कोई भी 2 किलो या 10 किलो का करीब लेवा। पांचई वनस्पति न का पत्ता नकी पहले चटनी बनाई लेवा न गोमूत्र मिले न एक बर्तन में उबाला 4 उबाल आने का बाद 48 घंटा तक इनका आसाज रखी रहना देवा। फिर कपड़ा सी छानी न 200 लीटर पानी में मिले न एक एकड़ में एको छिड़काव करी देवा न इनो जो हमने घोल बनाए जिख हम ब्रह्मास्त्र कवाएं ओखा 6 महीना तक हम रखी सकाएं न अपना खेत में उपयोग करी सकाएं। अब बात करा अग्निअस्त्र के बारे में एका में पत्ता में जो छेद करने वाला जो कीड़ा रहे फल न रहने वाले जो सुंडी न रहन सभी प्रकार का जो बड़ा कीड़ा रहे ओखा नियंत्रित करने का लेना अग्नि अस्त्र को उपयोग हो। एका लेना हमको सामग्री लगागा देसी गाय को गोमूत्र 10 लीटर तीखी हरी मिर्च 1/2 किलो का करीब लहसुन 1/2 किलो नीम का पत्ता 5 किलो न तम्बाकू 1 किलो। सबसे पहले जो भी सामग्री हमने बताई उन्हीं सामग्री का चटनी बनाई न गोमूत्र में मिले न बर्तन में 4 उबाल आने तक उबाली लेवा। फिर ओखा 48 घंटा तक ठंडो होने देवा न ओका बाद ओखा छानी लेवा। 200 लीटर पानी में 5 लीटर अग्निअस्त्र मिले न एक एकड़ में को छिड़काव करा। अग्निअस्त्र का 3 महीना तक हम रखी सकाल। थ्रिप्स नियंत्रण का लेना अग्निअस्त्र न ब्रह्मास्त्र का मिले न भी हम छिड़की सकाल। एक अलावा एक आरु घोल हम बढ़ते देवान भाई होन जो कि हमारा काम आवत वो छे 10 पर्णी अर्क ये भी सभी प्रकार का हमारी खेती में जितना भी प्रकार का रस चूसक कीट रह इल्ली न रहना ओका नियंत्रण का लेना उपयोग में आवत। एक अलग हमका सामग्री लगागा देसी गाय को गोमूत्र 10 लीटर देसी गाय को गोबर 2 किलो हल्दी को पाउडर 1/2 किलो अदरक की चटनी 1/2 किलो हींग पाउडर 10 ग्राम तम्बाकू पाउडर 1 किलोग्राम हरी मिर्च की चटनी 1 किलोग्राम लहसुन की चटनी 1/2 किलोग्राम नीम की टहनी न 2 किलोग्राम करंज अरंडी तेल बेल आम धतूरो तुलसी करेला पपीता हल्दी अदरक बबूल सीताफल में से कोई भी 10 पत्ता हम ले लेवा 2 किलो का हिसाब से जो सभी सामग्री मिली न 20 किलोग्राम का करीब हुई जाए। अब ये सभी सामग्री का 200 लीटर पानी में घोले लेवा न 40 दिन तक छाया में रखी न सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में घोड़ा 40 दिन का बाद कपड़ा सी छानी न ओको भंडारण करा 6 महीना तक हम एक रखी सकान। एक एकड़ का लेना 200 लीटर पानी में 5 से 6 लीटर 10 पर्णी अर्क मिलेनो को छिड़काव करा। साथ ही फफूंद नाशक दवा का लेना भी हम एक कि जैसे 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी छाछ 4 दिन पुरानी ओको मिले न छिड़काव करी सकान। एक अलावा गुड़ जल अमृत भी हम बनाई सकान 200 मिलीलीटर सरसों का तेल में 10 किलोग्राम गोबर न 1 किलो बेसन का अच्छी तरह मिले लेवा न इना मिश्रण का 4 किलो जैविक गुड़ का साथ 200 लीटर पानी में घोले न 24 घंटा के लेना छाया में रखी देवा न छानी ने को छिड़काव करा तो ये भी हमारा पौधा लेने का लेना टानिक को काम करेगा। तो भाई बहनों अभी हमने बात करी नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र न अग्निअस्त्र का बारे में साथ 10 पर्णी अर्क का बारे में ये सब जैविक विधि ना है इना तरीका न सी कदी हम अपनी खेती में खाद न को प्रयोग करांगा तो निश्चित रूप से हमका हमारी फसल को उत्पादन अच्छो मिलेगा न लागत भी कम लगेगा।
1: अभी सुन रहे थे आप खेती की बातें जिसमें आज हमने जाना नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र और अग्निअस्त्र के बारे में। जानकारी दे रही थी तुलसा दरगैया। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है श्री रामचरितमानस गान का, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग वाणी जयराम के गायन स्वर में।

श्री रामचरित मानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है।

का कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग वाणी जयराम के गायन स्वर में, और लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आपके खतों पर आधारित आपका पत्र कार्यक्रम आज सुनेंगे आप सुबह 7:20 से और फिल्म संगीत का समय होगा सुबह 8:30। सरिता मेखार के गाए कुछ लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9 से और सुगम संगीत में सुनना ना भूलिएगा भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई कुछ गजलें सुबह 9:15 से। शास्त्रीय संगीत में आज सुनिए पंडित रत्नाकर भट्ट का गायन राग होगा ललित। जिले की चिट्ठी का समय होगा सुबह 10 और सुबह 10:05 से सुनाना भूलिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। फोन करके अपने फरमाइशी गीत आप सुन सकेंगे हमारे कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में सुबह 11 से और 12 से सुनिएगा फिल्म संगीत। संग्रहालय से इस कार्यक्रम का समय होगा 12:30 पर और महिला कार्यक्रम का समय होगा 1:00। दोपहर की सभा में लोक संगीत सुनिए 1:30 से और सुगम संगीत 1:45 से। श्रोता दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 2:00 से और चित्रपट संगीत सुनिएगा 2:30 से। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5 आज सुनिए इस कार्यक्रम में आज का क्रम में एक ही फिल्म से। शाम 5:45 से होगा फिल्म संगीत और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम 6। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के गाई कुछ गजलें सुगम संगीत में शाम की सभा में आपको सुनवाएंगे 6:30 से और 6:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा सरिता मेखार के गाए कुछ और लोकगीत। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में शाम 7:20 पर आज सुनिए गर्मियों में पशुओं को कैसे बचाएं इस विषय पर डॉक्टर विक्रम सिंह कुशवाहा से भेंटवार्ता। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर और चित्रगीत 9:15 पर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम सुनिए 9:30। रात 10 सुनिएगा रूपक इंदौर का पूरा वैभव और स्थापत्य। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे का ख्याल गायन राग होगा बिहाग।

0: अभी सुन रहे थे आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार हम अनुप्रसारित करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पूर्व आईपीएस अधिकारी इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तरजालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य

0: संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोध प्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैण्ड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के

0: विदेशी संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:20 पर यानी अब से कुछ ही देर में सुनना न भूलिएगा आपके पत्रों पर आधारित आपका पत्र कार्यक्रम।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
3: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: इस समय आप है हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: यह आकाशवाणी इंदौर है। कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।
3: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के प्रयास होंगे, कहा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भोपाल में आज होगा जल संरक्षण पर केंद्रित सदा नीरा समागम का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी पोंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्वभर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा

0: है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतर्जली यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और यह है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
1: जल संरक्षण के काम कर रहे हैं और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हरेक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है।
0: पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: बेकिबाज समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केन्द्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक आईटी ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। आईटी ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89 परिवारों में से अब तक 48 परिवारों को 2 चरणों में 24-24 परिवारों के समूह के रूप में सफलतापूर्वक नवीन आवासीय कॉलोनी में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि शेष 41 परिवारों का पुनर्वास आगामी 3 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आईपीएल प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके पूर्व कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कल पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 29 नमूने जांच के लिए लिए हैं। आगरमालवा में कल आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने ईद और मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द से मनाने की अपील की है। भोपाल में संभावित हवाई हमले और बड़े आपदा हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में मॉक ड्रिल की गई। शिवपुरी में आज शासकीय आईटीआई झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र।

0: आपका पत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को तृप्ति लटपटे
1: और राजेश पाठक का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: तृप्ति जी, देखिए नौतपा चल रहा है
0: जी,
1: और 26 तारीख कल से नौतपा शुरू हो गया है
0: जी जी,
1: और 3 ये जून तक ये चलेगा
0: जी।
1: और ऐसा लग रहा है कि धरती आग उगल रही है, ऐसा हमारे मन में ख्याल आ रहा है। आग उगल रहा है, सूरज झुलस रहा है, धरती का चप्पा चप्पा संभल कर रहना इस गर्मी में बहुत सताता है निर्दयी नौतपा। गर्म थपेरे लू के बह रहे, पशु पक्षी सभी सहम रहे, आसमान से अंगारे बरसते, धरती के सीने जल रहे। इस प्रचंड तापिस से ही बादलों का संसार सजेगा, तपेगा नौतपा तो ही सावन में इंद्र का दरबार सजेगा। हर बूंद का मोल चुकाकर प्रकृति खुद को खूब सवारेगी, तप कर ये धरती 9 दिन आने वाले मानसून को बुलाएगी।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में हम बस श्रोताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस नौतपा में अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें और गर्मी से बचे, स्वस्थ रहे,
1: लू से बचे,
0: बिल्कुल लू से बचे,
1: और जहां भी चलें खूब पानी पिएं और सिर ढक के चलें
0: जी,
1: और हो सके तो प्याज वगैरह भी रख लें
0: जी, और हो सके तो दोपहर के समय जितना हो सके ना निकले, जरूरी ना हो तो।
1: बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को बतला दें आज 27 मई है और 27 मई को राष्ट्रीय सन स्क्रीन दिवस मनाया जाता है
0: जी।
1: जिसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी द्वारा अमेरिका में सबसे अधिक निदान किए जाने वाले कैंसर के खिलाफ दैनिक SPF के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। और राष्ट्रीय हेयर स्टाइलिस्ट मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, जो सैलून पेशेवर द्वारा किए जाने वाले भावात्मक श्रम को संबोधित करता है। तो इस दिन इसलिए भी खास है
0: जी। और गर्मियों की बात ही चल रही है तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप अपनी त्वचा का ख्याल रख सके, इस तेज गर्मी से, इस तेज धूप से त्वचा को बचा सके, ताकि यूवी रेज आपकी त्वचा को हानि ना पहुंचाए डायरेक्टली
1: जी। और अब बारी है अपने श्रोताओं का, तो किन किन श्रोताओं का
0: हमारे
1: मेल
0: पास
1: आया है?
0: काफी सारे पत्र आए हैं पहले,
1: और जो हमारे श्रोता
0: जी
1: जो मेल नहीं कर पाए हैं वे मेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 999

0: 9992903 एक बार पुनः सुन लें 9993290063। इस पर आप लाइव प्रसारण के दौरान जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम प्रसारित हुए थे उसके अनुभवों की प्रतिक्रिया हम आपसे शेयर करेंगे। और आपके हाथ में देख रहे हैं तृप्ति जी की ये पत्र,
1: एक बड़ा ही रंगीन पत्र है। एक बड़ा ही खूबसूरत रंगीन पत्र मेरे पास आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से। हमारे नियमित श्रोता है नियाज मोहम्मद मंसूरी जी, इनका ये पत्र है। ये कह रहे हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण कर 71वां स्थापना दिवस इंदौर की सरजमी पर ढोल के साथ मनाया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पूर्व उद्घोषक उद्घोषिका जी मुख्य रूप से उपस्थित होकर, राजेश पाठक जी आपके बारे में कहा है, वरिष्ठ उद्घोषक हसमुख संजीव मालवी जी के बारे में भी कहा है, इनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का सफर शुरू किया। अनेक श्रोतागण ने फोन के माध्यम से बातचीत की, जिसमें संतोष जी, विजय रॉय जी, देवेंद्र जी, मधुकौर अपनी बात इन्होंने रखी और कई जगह श्रोताओं ने अपनी जगह अन्य श्रोतागण उपस्थित होकर इनको मनाया। जैसे सनावत के श्रोतागण ने अपने विचार सुनाए, मिमी जी की बात सुनी, अंकित जी की बात सुनी और सभी की आवाज़ सुनकर इन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही ये कह रहे हैं कि ये 3 घंटे का लाइव शो शांत सुरों से शुरू होकर ढोल की थाप पर खत्म हुआ। ये जागरूकता स्थापना दिवस था, संगीत के साथ आनंद और उत्सव मनाने का जरिया भी है। अच्छी प्रस्तुति पर इस कार्यक्रम में पधारे हमारे वरिष्ठ उद्घोषक जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद और शुभकामनाएं।
0: कौन लिखने वाले हैं
1: जी? ये लिखा है नियाज मोहम्मद मंसूरी जी ने कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से।
0: जी बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। सवेरे 1:50 का ये कार्यक्रम हुआ
1: जी,
0: 10:10 से 12 तक चला और शाम में ये कार्यक्रम 6 शुरू हुआ और करीब करीब 9:30 खत्म हुआ। और पूरी संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग जो है आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पर किया गया और जो मुख्य जो शाम के जो कार्यक्रम थे उसमें केक कटिंग वगैरह, शपथ ग्रहण, बैस सिरोमणि, स्वाति उखले और साथियों द्वारा लोक गायन और ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट द्वारा, कंप्यूटर्स द्वारा लघु नाटिका मंचन मैं हूँ आकाशवाणी उद्घोषकों द्वारा प्रस्तुत किया गया और महिला युवानी एवं मराठी सभा के कंपियर्स के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और सामूहिक ढोल नृत्य द्वारा जो है उस सब का भव्य समापन किया गया। और इसके ढेर सारे मेल और पत्र तृप्ति जी आए हुए हैं
1: जी।
0: अगला किनका है?
1: अगला पत्र जो है वो है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी का, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 20 मई 2026 बुधवार का वंदना कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस दिन का कार्यक्रम आपका पत्र भी इन्हें बहुत पसंद आया। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश पाठक जी और अखिलेश बाथम जी की प्रस्तुति बेहद ही शानदार लगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इन्होंने लिखा है, अच्छी संगत से हमेशा अच्छा ही होता है, जैसे फूलों से गुजरी हवा भी सुगंधित हो जाती है।
1: जी क्या बात है।
0: और आगे लिखने वाले हैं, आपके पत्र कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश आया है भेरूलाल बाक्तरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी इंदौर की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुबह लाइव फोन इन कार्यक्रम और शाम का रंगारंग कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव देखा। हम प्रत्यक्ष शामिल नहीं हो सके किंतु कार्यक्रम देखकर ऐसा लग रहा था कि हम मालवा हाउस की दर्शक दीर्घा में बैठकर ही ये कार्यक्रम देख रहे हैं। क्या बात है,
1: क्या बात है। और हमारा
0: और
1: उद्देश्य
0: इसके अलावा देखिए तृप्ति जी,
1: जी
0: जैसे मनीष निमारे जी खरगोन में
1: जी
0: ये कार्यक्रम किए
1: जी,
0: प्रवीण श्रीमाली जी और कई साथियों द्वारा ये कार्यक्रम जो है आपका सनावत बर्मा में भी किया गया, ढेर सारे और कई,
1: मतलब आकाशवाणी का स्थापना दिवस ना सिर्फ हमने मनाया बल्कि श्रोतागणों ने
0: विभिन्न
1: स्थानों पर
0: अपने स्थानों पर अपने अपने तरीकों से मनाया
1: जी। ये उत्साह उमंग ऐसे ही जारी था और जारी अभी भी है।
0: और आकाशवाणी का एक खतरमा आकाशवाणी इंदौर का एक खतरमा स्थापना दिवस और आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष हुए इस अवसर पर जो श्रोताओं में उमंग देखा गया लाजवाब रहा।
1: अगला पत्र हमारे पास आया है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से, सूरज कुमार ढाक से, साक्षी ज्योति

0: ऋतुराज, राजेश अचौली, पूर्णिमा पटेल और दुर्गेश नागनपुरे का इनका कहना है कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 18 मई 2026 सोमवार को आकाशवाणी मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में काव्य आणि प्रतिभेचे अधिक मास विषय का सारा काशीकरण इंदौर जी से डॉक्टर सुवर्णा लापालीकर की बातचीत बहुत अच्छी लगी। साथ ही धनंजय गाडगिल इंदौर जी का काव्य पाठ भी इन्हें बहुत पसंद आया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, सतीश वाजपेयी जी इंदौर से लिखे हैं। पाठक जी नमस्कार, आज मैं पहली बार इंदौर में आकाशवाणी में आपको सुन रहा हूँ। इसके पूर्व मैं खंडवा आकाशवाणी में ही सुनता था क्योंकि मुझे ईमेल चलाने नहीं आता है। तो हम तो कहेंगे वाजपेयी जी की इस वर्तमान जो समय है, ईमेल का दौर चल रहा है, डिजिटल क्रांति का युग चल रहा है, इसमें ढलें तो और अच्छा रहेगा
0: जी।
1: और आगे लिखते हैं कि पत्र जो है वह प्राप्त कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कई बार मैं पत्र लिखे हैं वो शामिल नहीं होते हैं। आगे और इन्होंने लिखा है कि 90 वर्ष का कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, और आगे भी आप हमेशा लिखते ही रहें। देखिए आपने व्हाट्सएप किया और आपका जो है व्हाट्सएप संदेश जो है हमने शामिल कर लिया है।
0: तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पत्र या फिर व्हाट्सएप या मेल किसी भी जरिए से जो है वो श्रोताओं को जोड़ सके और उनका संदेश हम तक पहुंच सके। अगला संदेश जो है वो आया है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली जी का
1: जी।
0: उनका कहना है 22 मई को आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस पर बड़वा सनावत के श्रोताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सभी श्रोता आपके लाइव कार्यक्रम में भी रूबरू हुए।
1: और देखिए उनके यहाँ अतिथि आए हुए थे निमिष भंसाली जी।
0: अच्छा
1: उनके कई श्रोता जुड़े हुए थे। हम लाइव प्रोग्राम में कई श्रोताओं को भी जोड़े, खरगोन के भी कई लोग जुड़े, कई जगह से विभिन्न श्रोता जुड़े और अच्छा लगा। ऐसा लग रहा कि हमारे घर का ही उत्सव।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे ये लिखते हैं कि इस दिन प्रातः 7:20 से इंदौर परिक्रमा का आनंद लिया, जिसमें आकाशवाणी केंद्र से जुड़ी हस्तियों की आकाशवाणी के प्रति उनके मन की बात जानने का को मिला। सुंदर प्रस्तुति मुकाम सिंह जी की थी, साथ ही आकाशवाणी के प्रसारण गौरवमयी 90 वर्ष का सफर
1: और शुरुआती दिनों से जो हमारे दिग्गज जुड़े हुए थे उनके विचार भी लोगों को सुनने को मिले। तो ऐसी स्थिति में जब आकाशवाणी 90 वर्ष प्रसारण का जब मना रहा होता है और स्थापना दिवस का 71वां मना रहा होता है, तो हमने पुराने जो उद्घोषक भाई बहन है उनको भी मैंने याद किया, ताकि अपने उस जमाने के जो जुड़े हुए उनके जो विचार हैं अपने श्रोताओं
0: के अनुभव है वो सब साझा हो सके। बिल्कुल। और ये सुन के श्रोताओं को काफी अच्छा लगा, उनकी प्रतिक्रिया भी।
1: आगे भी कुछ लिखा है इन्होंने
0: जी। आगे इन्होंने लिखा है कि इन्हें फेसबुक लाइव पर पूरा कार्यक्रम देखा सुना, जो बहुत ही मनमोहक लगा इन्हें प्रस्तुतियां। सभी की मेहनत के लिए इन्होंने दिल से सल्यूट किया है।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपने क्षेत्र में ये कार्यक्रम मनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ सभी मित्रों को भी धन्यवाद।
0: बिल्कुल।
1: और आगे हनुमंत सिंधे जी, ऋषिकेश सिंधे जी, ग्राम सीटे, जिला सांगली, महाराष्ट्र से लिखते हैं, आकाशवाणी इंदौर के 71 साल पूरा हुआ, इस उपलक्ष्य में जो 10:10 से लाइव प्रोग्राम प्रसारित किया गया बहुत अच्छा था और हमने आनंद लिया इस कार्यक्रम को
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगला मेल है मोटका माफी जिला खंडवा से, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल का। इनका भी कहना है कि 22 मई को सुबह 7:20 पर इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की विशेष स्मृतियों के झरोके से आकाशवाणी के वरिष्ठ कलाविदों के संदेशों को सुना, काफ़ी रोचक लगे। कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता और पूरी आकाशवाणी टीम को इन्होंने धन्यवाद दिया।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, चौकड़ा धाम कॉलोनी सनाबत से कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम सिंह चौहान लिखते हैं, हमारे दिन की खूबसूरत सुबह आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून के साथ भक्ति संगीत, चिंतन और रामचरित मानस गान से शुरू होती है, जो पूरे दिन को सुहावना बनाए रखती है।
0: क्या बात है।
1: आपको एवं पूरी टीम को आकाशवाणी के 71वें स्थापना दिवस की इन्होंने सुख

0: शुभकामनाएं और बधाई दी है। और आगे लिखा है कि लू से बचने के सावधानियों के बारे में विस्तार से कोठारी जी ने, जो संध्या कोठारी जी ने जो किसान वाणी के जो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में जो समझाइश दिया किसानों को, बहुत अच्छा लगा। और परिक्रमा में मुकाम सिंह चौहान जी ने जो स्थापना दिवस पर केंद्रित जो विभिन्न कई दिग्गजों से जो बातचीत करवाई, उनके विचार सुनने को मौका मिला, कृत कृत्य और गदगद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। और आगे हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आए हैं, ये अशोक मेहता जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने व्हाट्सएप किया है। लिखा है, आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष और आकाशवाणी केंद्र के स्थापना के सुनहरे 71वें वर्ष फेसबुक पर देखा, मन सुनकर और देखकर काफ़ी आह्लादित हो गया। और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने हार्दिक बधाइयाँ दिया है। और आगे लिखा है कि सब कुछ ऐसा लग रहा है था कि एक विवाह समारोह जैसा लग रहा था, बैंड बाजा बारात का माहौल रहा होगा और विशेषकर पुराने और नए उद्घोषकों का मिलन और नई पुरानी यादें और श्रोताओं के आकाशवाणी के साथ बिताए पल, सब कुछ एक स्वप्न जैसा लग रहा होगा, इन्होंने ऐसा कल्पना किया। और आगे लिखा है कि मैं 69 के दशक से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम का आनंद लेता हूँ, चाहे युवानी कार्यक्रम हो, मनभावन हो, रामचरितमानस गान हो। और मालवा निमार का सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम नंदा जी भेरा जी कानन जी द्वारा जो खेती गृहस्थी कार्यक्रम जो प्रसारित होता था, इसका भी मैंने आनंद लिया है। और विजय राय, संजीव मालवीय जी और संतोष जोशी जी, देवेंद्र कौर, मधु जी की आवाज़ मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और इस भव्य आयोजन और आकाशवाणी के सफल 71 वर्ष पूर्ण होने पर इन्होंने आकाशवाणी परिवार के लिए अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां प्रेषित किया है, अशोक मेहता जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से।
1: राजेश जी, जो उत्साह और उमंग हम यहाँ पर महसूस और अनुभव कर रहे थे, कितनी अच्छी बात है कि वो श्रोता भी वहाँ बैठ के सुन के अनुभव कर रहे थे।
0: और उन्हें लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि हम विदेश में रहते हुए भी इंडिया में हैं।
1: क्या
0: उन्हें काफी अपनापन लग रहा था, तो रेडियो की यही एक खास बात
1: है, यही खूबसूरती है कि कहीं पर भी बैठकर आप यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। और अगला जो मेल है हमें आया है सुदर्शन शाह जी का, इनका कहना है कि दिनांक 23 तारीख को प्रातः 8:30 बजे कंपेयर्ड फिल्म संगीत के अंतर्गत पानी के विभिन्न स्रोतों को लेकर दी गई जानकारी इन्हें काफी पसंद आई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं पैनिक विभिन्न स्रोतों को, अभी जो गर्मी का समय चल रहा है, इनका कहना है कि इस समय ये जानकारी काफी फायदेमंद है।
0: और देखिये, जल संरक्षण करना चाहिए, तालाब का भी गहरीकरण करना चाहिए और खेत का पानी खेत में ही संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वाटर लेवल जो है काफी नीचे
1: जा रहा है और गर्मियों में स्पेशली हम देखते हैं विशेषकर
0: जल की बचत करें
1: जी, काफी परेशानियों का सामना कुछ क्षेत्रों में करना पड़ता है। तो ऐसे समय पर इस तरह का कार्यक्रम जो है आकाशवाणी का यही कोशिश रहती है कि उन्हें अगला कार्यक्रम जो है इन्हें 25 तारीख को साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में विश्व थायराइड दिवस पर विशेष चर्चा ही जो इन्हें काफ़ी पसंद आई, स्वास्थ्यवर्धक और लाभप्रद लगी, और साथ ही इन्हें कार्यक्रम दूसरे भी आकाशवाणी के काफ़ी पसंद आते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से लिखने वाले हैं आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी। इन्होंने लिखा है, सर्वप्रथम दिनांक 22 मई को आकाशवाणी इंदौर का स्थापना दिवस मनाया गया। सब श्री कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी, अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता जी, कार्यक्रम अधिकारी असीम कैतवास जी, फेसबुक लाइव कार्यक्रम के संचालक आदरणीय संजीव मालविया जी, जे एन वर्मा जी, एस के जैन जी, एस डी यादव जी, डॉक्टर प्रीति छड़ीदार द्वारा दीप प्रज्वलन करके शानदार कार्यक्रम की शुरुआत की गई और सभी को इन्होंने बहुत बहुत बधाइयाँ भेजा है। आगे लिखा है, युवानी कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी असीम कैथवास जी द्वारा आकाशवाणी इंदौर के नियमित श्रोताओं बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली जी, खंडवा से आनंद जोशी जी, खरगोन से वर्षानी मारे जी द्वारा बधाई संदेश को भी स्थान इन्होंने दिया और बहुत बहुत आभार इसके लिए लिखा है। और 25 मई को गुड मॉर्निंग इंदौर में कार्यक्रम में सुषमा ब्यास जी द्वारा, प्रीति छड़ीदार जी द्वारा और अभय गुप्ता जी, गोयल जी एवं नित सोनी जी द्वारा वर्तमान प्रदूषण से भरे पर्यावरण के मध्य व्यक्ति को कैसी डाइट और किस प्रकार योग प्राणायाम किए जाने चाहिए, इस पर बेहद ही जनोपयोगी जानकारी दी गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने हमें लिखा
1: जी। और अगला जो हमें मेल आया है वो है सोनू और मोनू विश्वकर्मा जी का, ग्राम साल्याखेड़ी जिला आगर मालवा से। आकाशवाणी इंदौर की 71वीं स्थापना दिवस की इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं हमें दी है और कहा है कि हमें आकाशवाणी इंदौर से बहुत ही लगाव और प्रेम है। आकाशवाणी इंदौर की 71वीं स्थापना दिवस के दिन के सारे प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद आए, अच्छे लगे और इन बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिया है।
0: आपको भी ढेर सारे बधाइयां। आपने हमारा सवेरे का भी कार्यक्रम और शाम का भी कार्यक्रम जो आकाशवाणी फेसबुक पर लाइव चल रहा था देखा, सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और संदेश आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। लिखने वाले हैं सोहन जोशी जी, हरमिंदर चावला जी, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी बैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जय जयवंती कैबेट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर जी। इन्होंने स्थापना दिवस के कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा और ढेर सारे इन्होंने बधाइयां प्रेषित किया है। आपको भी पूरे टीम को आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारे बधाइयां जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्या बात है। अगला जो पत्र है वो हमें हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े की तरफ से आया है। इनका कहना है, कार्यक्रम आपका पत्र प्रस्तुत करता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आते हैं, खासकर मनभावन, चॉइस टाइम, आपकी पसंद, MH हॉटलाइन और ये सारे कार्यक्रम, फरमाइशी कार्यक्रम इन्हें खासकर पसंद है। और साथ ही इन्होंने हमें 71वें स्थापना दिवस के लिए बहुत बधाई दी है।
0: हमारे यहाँ से ढेर सारे फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और ढेर सारे पत्र भी आते हैं, शामिल भी करते हैं
1: जी।
0: और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि श्रोताओं पर केंद्रित जो है उनके पसंद पर केंद्रित कार्यक्रम हम प्रसारित करें। आपने हमें लिखा, हमारे कार्यक्रमों को सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, लखन बैरागी, माधव बैरागी, वेदांश बैरागी, ग्राम लेकोड़ा, अंजना उन्हेल जीरा, उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं। आकाशवाणी इंदौर को 71वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखे हैं कि आकाशवाणी इंदौर के हमें सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: और अगला मेल,
1: अगला मेल है अनिल बामनिया जी का लाबरिया भैरव इंदौर से। इनका कहना है कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ता को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रशंसा आपके केंद्र से मनभावन और चॉइस टाइम तथा FM आपकी पसंद आदि कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इनकी प्रस्तुति हमें बड़ी लाजवाब लग रही है। सबसे अधिक इंदौर आकाशवाणी केंद्र से फरमाइशी कार्यक्रमों में उद्घोषकों द्वारा श्रोताओं के पत्र अधिक से अधिक शामिल किए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा केंद्र अलावा अन्य आकाशवाणी पर इतने अधिक पत्र शामिल नहीं किए जाते हैं, केवल मात्र 2-3 ही पत्र शामिल किए जाते हैं। इनका कहना है कि आकाशवाणी इंदौर अधिक से अधिक पत्र शामिल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं को स्थान देता है अपने कार्यक्रम में, इसके लिए वो विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: और देखिए, हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक कार्यक्रम शामिल हों, अधिक श्रोताओं के पत्र शामिल
1: जी, बिल्कुल।
0: और लाबरिया भैरू इंदौर से ये लिखने वाले हैं अनिल बामनिया, परमिला बामनिया, नंदनी, मुस्काम, नीलम एवं समस्त बामनिया परिवार। लिखे हैं, आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आगे लिखे हैं, मनभावना, चॉइस टाइम और FM आपके पसंद आदि कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लाजवाब लग रही है। सबसे अधिक इंदौर आकाशवाणी के फरमाइशी कार्यक्रमों में उद्घोषकों द्वारा श्रोताओं के पत्र अधिक से अधिक शामिल किए जाते हैं, ये भी अच्छा लगता है। और आगे इन्होंने लिखे हैं कि 22 मई को जो कार्यक्रम किया गया ये हमें काफ़ी अच्छा लगा, हम लाइव प्रसारण का भी आनंद लिया। और आगे लिखते हैं कि 24 मई को हमारे मेहमान कार्यक्रम में ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी द्वारा सपना शर्मा जी से जो बातचीत किया गया
1: जी,
0: जिसमें नशे को दूर करने के कई उपाय बताए गए, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिखने वाले हैं भानु तोमर, टिल्लू गुर्जर, बल्लू भाई, राम नरेश गुर्जर, कल्लू तोमर, सोनू पंडित, बल्ला ग्राड़िया, ग्राम रयात का पूरा मालनपुर, ये ग्वालियर से लिख रहे हैं
1: जी।
0: लिखा है कि बाथम जी नमस्ते, आपका कार्यक्रम सुना, काफ़ी अच्छा लगा। और आगे लिखे हैं कि हमारे गांव में मनाए जाने वाले

0: भी एक कार्यक्रम है, 5 किलो बूंदी के लड्डू सभी बांटकर खुशी मनाया आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस पर। ये कार्यक्रम ग्वालियर में सुना, काफी अच्छा लगा इन्होंने, और फेसबुक पर भी देखा। और आगे लिखा है कि जो लिंक जो हमें मिला था
1: जी जी,
0: इस पर भी काफी अच्छा लोगों ने खूब आनंद लिया और सुना
1: जी। देखिए मिठाइयां बांटी जा रही है, ये सुन के इतना भाव।
0: और इन्होंने लिखा है 5 किलो बूंदी के लड्डू बांटे
1: जी जी, वही वही,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अपना बर्थडे भी होता है, संस्था का भी बर्थडे होता है, और उस संस्था का, जिस संस्था को आप सुनते हैं, आनंद लेते हैं
1: जी।
0: पूरे आकाशवाणी का आपने पूरे गांव में सभी लोगों के साथ फेसबुक पर देखा
1: और उसको
0: आनंदित हुए।
1: बिल्कुल।
0: आगे इन्होंने लिखा है कि बाथम जी, आपने जो है जो नंबर था वो नंबर कट गया और नेट न मिलने के कारण कुछ परेशानी हुई। ये लिखने वाले हैं कचोट नंदनी और बिट्टू, और हिमाचल प्रदेश से भागीरथ कटोच, भोला कटोच, उर्मिला कटोच ये लिखते हैं, वहाँ भी हमने ये कार्यक्रम को यहाँ सुना।
1: क्या बात है।
0: और चंडीगढ़ से ममता शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, गोलू शर्मा जी, वंदना शर्मा जी, तन्मय शर्मा जी, ये सभी लिखें कि स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया काफी अच्छा लगा, हमने चंडीगढ़ में भी ये कार्यक्रम को
1: देश विदेश तक इस कार्यक्रम को, हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम का लाइव
0: और
1: प्रसारण
0: लिखा है, काफी
1: गया।
0: अच्छी क्वालिटी में ये लाइव प्रसारण
1: जी, लाइव प्रसारण देखा गया फेसबुक पर, दिन भर सुना गया हमारे कार्यक्रम, इसके लिए बहुत बहुत श्रोताओं को धन्यवाद। अगला जो हमें मेल आया है वो धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा कशीश, साइमा, हसनैन और खुशी का है। इनका कहना है दिनांक 23 मई को आकाशवाणी इंदौर से रात्रि 8:15 पर प्रसारित प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया सुना, बहुत ही दिलकश और उम्दा लगा। प्रस्तुतकर्ता माजिदा खान जी को इन्होंने उनकी खूबसूरत शायरी और प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। गीतों का चयन भी इन्हें काफ़ी पसंद आया, और साथ ही इनका कहना है कि 23 मई आकाशवाणी इंदौर की प्रातःकालीन बेला में प्रसारित प्रोग्राम सुनहरे पल भी इन्होंने सुना, और प्रोग्राम में सुनाए गए सुमधुर और कर्णप्रिय गीतों के साथ प्रस्तुत करता पद्मश्री तपस्वी जी की अद्वितीय पेशकश भी इन्हें बहुत पसंद आई।
0: काफी अच्छी पेशकश की थी
1: जी
0: पद्मश्री तपस्वी जी ने, और देखिये सुनहरे पल में वास्तव में इतनी अच्छी चर्चा करते हुए जो गीत बजाए गए वास्तव में काफी अच्छे थे और श्रोताओं ने भी सराहा। हमारे पास एक और श्रोता का व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश आया है, चंद्रेश गोहर सागर से लिखे हैं, आपके जो कार्यक्रम स्थापना दिवस पर जो प्रसारित किया गया हमने फेसबुक पर लाइव देखा, और वास्तव में 71वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को देखने और सुनने का अवसर मिला, और काफ़ी ही आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति काफ़ी अच्छी थी, और बहुत बहुत इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं
1: जी।
0: आगे घंटाघर चौक खंडवा से पत्र प्राप्त हुआ है, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया जी का
1: जी।
0: इन्होंने लिखे हैं कि आपका जो है कार्यक्रम जो है स्थापना दिवस के अवसर पर और आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया 22 मई को जो सवेरे से पूरी दिन भर सुना, हमने भी ये कार्यक्रम को आनंदित हुए और खूब आनंद लिया। और आगे इन्होंने संदेश लिखा है कि पौधा लगाओ, पर्यावरण को सुरक्षित रखो। वास्तव में इनका ये जो संदेश है आज की जरूरत भी है,
1: बहुत जरूरत है। संजय पंचोलिया जी का ही मेल भी आया है, उन्होंने कहा है तृप्ति जी और पाठक जी को नमस्कार, उनका कहना है जेठ तपे सो सावन झूम के बरसे, नवतपा का आज तीसरा दिन है, और उनका कहना है कि खंडवा में बहुत गर्मी है, तो क्या कहना चाहेंगे गर्मी के लिए। तो हमने
0: नौतपा का आज तो दूसरा दिन होना चाहिए
1: जी, वैसे हाँ आज दूसरा दिन होना चाहिए, इनका कहना है कि आज तीसरा दिन है। खंडवा, खंडवा तो जाना ही जाता है गर्मी के लिए, खंडवा में तो काफी गर्मी रहती है।
0: और आगे भी लिखा है कि फेसबुक पर जो मैंने देखा अद्वितीय था, और संजीव मालवीय जी ने कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन किया, और आकाशवाणी की टीम के सफल प्रयास के लिए जो है पाठक जी और गुप्ता जी को इनकी सकारात्मक सोच का इन्होंने अभिनंदन किया है। वास्तव में देखिए हमारा जो कार्यक्रम है काफी सुना गया
1: जी,
0: और विभिन्न क्षेत्रों में सुना गया
1: बिल्कुल।
0: और अगला
1: अगला जो खत है वो हमें मिला है ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा का। रिंग रोड से नर्मदा नगर महाराष्ट्र से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और

0: भावना वर्मा का। इन्होंने हमें नमस्कार कहा है और कहे हैं हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 19 अप्रैल को दिन रविवार कार्यक्रम था, कल के सितारे बच्चे हमारे, इन्हें बहुत पसंद आया। कार्यक्रम में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट प्रक्षेपण दिवस मनाया गया और इस दिन 19 अप्रैल 1975 पे इस विषय पर जानकारी दी गई। नन्हे मुन्ने बच्चों से शिखा जी ने जो बातचीत की, इन्हें बहुत पसंद आई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पुणे से हमारे पास पत्र जो आया, पंकज बारोदे आर्या आदि और बेटी बारोदे चंद्रप्रभा बारोदे जी लिखे हैं कि आपका जो कार्यक्रम हमने जो लाइव सुना फेसबुक पर, ये काफ़ी अच्छा लगा। और आगे हमारे पास जो ये जो पत्र जो आया है, ये लिखने वाले हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी जी और अलीना जी। ये भी लिखते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम, आपका जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम, काफ़ी अच्छा लगा। और गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका जी, बलविंदर बिरक जी, जयतेग बिरक जी और मीका बिरक जी लिखे हैं, आपका ये जो कार्यक्रम स्थापना दिवस पर था काफ़ी अच्छा लगा। और अनिल कौचाले जी और सबीहा, सुषमा और सीमा और कई ढेर सारे, इन्होंने पूरे परिवार लिखे हैं, आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और देखिए, कौचाली जी से हम कहना चाहेंगे कि आप हैंडराइटिंग अच्छा से लिखें, नहीं तो टाइप करा के भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ में हमारा कार्यक्रम सुना गया और काफ़ी सराहा गया। टीडी मल्होत्रा जी हैं, ऋतिक मल्होत्रा जी, प्रतीक मल्होत्रा जी, नवनीत राय, डॉक्टर अमन दीप और अनिल शर्मा जी और साहिल जी और बिट्टा बजाज जी, सभी ने कार्यक्रम सुना और सराहा, काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम लगा। और अगला मेल तृप्ति जी,
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से ही दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम, इन्हीं का ही अगला मेल भी आया है। वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे कहना चाह रहे हैं कि हमें दिनांक 1 मई 2026 के दिन शुक्रवार का महिला सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में स्मार्ट पेरेंटिंग के तरीके, मी टाइम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में शिखा जी द्वारा बहुत अच्छी, बेहद लाजवाब जानकारी दी गई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लिखा है कि नौतपा के दोहे प्रकृति और मौसम के चक्र को दर्शाते हैं। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के बाद के 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है और इस दौरान भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन यह आने वाले मानसून की अच्छी बारिश के लिए शुभ मानी जाती है। नौतपा में जितनी धरती तपती है उतनी माना जाता है कि बारिश अच्छा होगा
0: जी।
1: और आगे लिखा है, चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है। आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है। हर सुबह खुद को एक नई उम्मीद दीजिए, जो भी सोचा है उसे पूरा करने की ताकत दीजिए। और देखिए, इन सुंदर वाक्यों के साथ हमारे श्रोता जो अपनी भावना प्रदर्शित करते हैं, वास्तव में लाजवाब लगता है। और हम भी अपने पूरी दुगनी ऊर्जा के साथ हम लोग कार्यक्रम पेश करने के लिए भी
0: बिल्कुल कोशिश करते हैं। बिल्कुल
1: सही। और अगला मेल,
0: अगला मेल है हमारे पास आया, जो वो है
1: जी,
0: हमें ग्राम जसवाड़ी से ही ये मेल मिला है, जिसमें लिखा है कि हमें दिनांक 13 अप्रैल 2026 के दिन सोमवार का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में वर्ल्ड आर्ट डे स्पेशल पर प्रसिद्ध कीबोर्ड प्लेयर एवं संगीतकार दीपेश जी, प्रसिद्ध रंगोली आर्टिस्ट कुंज बिहारी पंड्या जी और मूर्तिकार राधा किशन जी वाडिया एवं राजेंद्र जी वाडिया से की गई बातचीत बहुत अच्छी लगी और प्रेजेंटर शिखा जी को हार्दिक बधाई।
1: आपको भी ढेर सारे बधाइयां। स्थापना दिवस पर तारीफ लिखते हुए नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपल धर, माया सीमांश, चंद्रकला देवीदास, पोपल हरिभाव बिडबे, श्रावण अनिमा बिडबे, ये लिखते हैं कि ये कार्यक्रम आपका अच्छा रहा। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, आदरणीय राजेश जी और तृप्ति जी दोनों को सादर नमस्कार लिखे हैं
0: जी।
1: और 20 मई को आपका पत्र कार्यक्रम सुना, राजेश पाठक जी और बाथम जी की प्रस्तुति काफ़ी लाजवाब लगी। आकाशवाणी इंदौर ने 22 मई को 71वें स्थापना दिवस मनाया एवं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर इस रंगारंग कार्यक्रम के अंतर्गत राजेश पाठक जी और संजीव मालवीय जी, विजय राय जी और संतोष जोशी जी को सुना, काफ़ी अच्छा लगा।

0: और इन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कुछ चंद पंक्तियाँ लिखे हैं। उसे फूल की खुशबू से मेरा कोई काम नहीं, उसे फूल की खुशबू से मेरा कोई काम नहीं, जिस फूल की पत्ती पर आकाशवाणी इंदौर तुम्हारा नाम नहीं।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है, हम आकाशवाणी इंदौर से प्यार करते हैं। आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पर प्रस्तुति हमने सुनी और अच्छी विभिन्न गतिविधियों को देखकर इस कार्यक्रम में आकाशवाणी इंदौर के कलाकारों को सुना भी, देखा भी, बहुत आनंद आया। आपकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भेजा है और ढोल की थाप भी इन्हें काफ़ी अच्छी लगी। बीच बीच में कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने सुनाई दिया जा रहा था, और इंदौर परिक्रमा में रंजीत बगारिया जी, सतीश बागरिया जी, कृष्ण चंद सक्सेना जी, मालती जोशी जी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, संदीप शास्त्री जी और आनंद अय्यर जी आदि हस्तियों से मुकाम सिंह चौहान जी ने अवगत कराया। इनके विचार सुनने को मिला, अच्छा लगा। और आरती जी की भी प्रस्तुति लाजवाब लगी। और आगे इन्होंने लिखे हैं, इनके और भी मित्र स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम को आनंद लिए, जिनमें हैं हुकुमचंद कटारिया जी, पिंटू सेन जी, हरिनिवास खेरे जी, बाबूलाल चौधरी जी, मिश्रा गोल्डन, केपी चौहान जी, दीपक सचिन कटारिया जी, कृष्ण बिराज, अर्णब काव्यांशी कृतिका जी और प्रभा कटारिया जी। आपने हमें लिखा हुकुमचंद कटारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इनकी इतनी सुंदर प्रतिक्रिया को देखते और इतना प्यार पाने के कारण हम लोगों का जो है पेशकश करने का, कार्यक्रम पेश करने में आनंद जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। राजेश जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और आगे पल्लवी शाह जी लिखते हैं कि आकाशवाणी इंदौर का स्थापना दिवस पर बड़वा में विभिन्न जो रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए
1: जी जी,
0: और बड़वा के श्रोता साथी श्री प्रिंस श्रीमाली जी, खंडवा से आनंद जोशी जी और सनावा से बाबूलाल जी, अशोक कुमार वर्मा जी, हुकुमचंद कटारिया जी एवं आसपास के कई श्रोता साथियों ने उपस्थित होकर स्थापना दिवस पर आकाशवाणी इंदौर से जुड़े अपने यादों को संयोजा बधाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्या बात है। 26 को गुड मॉर्निंग इंदौर बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में 3D प्रिंटिंग, भविष्य के निर्माण की नई तकनीक विषय पर दी गई जानकारी बहुत लाभदायक लगी। अक्षय तृतीया पर दी गई जानकारी ने बेहद लाजवाब लगी। इसी कार्यक्रम में युवा उद्यमी श्री सागर जोशी और अभिनंदनी चौधरी से की गई बातचीत लाभदायक लगी। प्रेजेंटर दुर्गेश नंदनी चौधरी जी को हार्दिक बधाई और शुभ।
0: लिखने वाले हैं अभिजीत गाभनकर, सरिता गाभनकर और गाभनकर, प्रिंस गाभनकर जी, और लिखे हैं आपका जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस के अवसर पर जो प्रसारित किया गया, काफ़ी अच्छा लगा और हमें सुनकर काफ़ी आनंद आया। और इसी बीच हमारे बीच एक और पत्र प्राप्त हुआ है कोल्हापुर से। ये लिखते हैं अतुल गौतमी, धम्मदिना, अरुण काले जी और एडी कंबेले जी। ये लिखते हैं कि आपका जो स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया काफी अच्छा लगा
1: जी। स्थापना दिवस का कार्यक्रम इससे ही समझ में आ रहा है हमें कि कितने श्रोताओं ने कहां कहां से सुना और देखा है।
0: पूरे देश विदेश के श्रोताओं ने,
1: पूरे देश और विदेश से देखा।
0: फेसबुक पर ये कार्यक्रम
1: बिल्कुल
0: लाइव,
1: फेसबुक पे लाइव इसका आनंद लिया,
0: लाइव स्ट्रीमिंग में था
1: जी बिल्कुल।
0: और अगला मेल
1: में हमें प्रतिक्रिया मिली है। 24 अप्रैल 2026 के दिन शुक्रवार का महिला सभा कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दी गई जानकारी इन्हें बहुत पसंद आई। साथ ही टीकाकरण है जरूरी, बच्चों की सुरक्षा हो पूरी, इस विषय पर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा पुरानिक से दुर्गेश नंदनी जी की बातचीत इन्हें बहुत लाभदायक लगी। ये ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से हमें मेल मिला है।
0: देखिए, वास्तव में पंचायती राज जो है भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। और ये 3 स्तर के होते हैं। 3-tier व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायत
1: जी,
0: ग्राम स्तर पर, और पंचायत समिति, ब्लॉक समिति जो होता है मध्यवर्ती स्तर पर, और

0: जिला परिषद जिला स्तर पर होता है और यह पंचायती राज का सर्वोच्च स्तर है जो संपूर्ण जिले पर विकास योजनाओं का समन्वय और पर्यवेक्षण करती है। और देखिए इसका जो तथ्य है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से शुरू हुआ था। और वास्तव में यह जो जानकारी जो दी गई थी बहुत अच्छी दी गई थी हमारे, और श्रोता काफी लाभान्वित हुए। और तृप्ति जी, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है विदा लेने का।
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलें
1: जी।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम आपका पत्र। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार प्रभात सुनिए बस कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से।

0: रहते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया।

0: शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये कुछ पेचिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन

0: स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गेट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claim circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
5: The High Level Committee will conduct a comprehensive assessment.

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ही गाना सुन रहे थे आप। अरिजीत सिंह की आवाज में प्रीतम का संगीत था, फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। दोस्तों, सफलता की शुरुआत हर दिन की छोटी छोटी आदतों और जीवन शैली में बदलाव से होती है। जैसे सुबह उठते ही फोन उठा के सोशल मीडिया चलाने से बचे, सबसे पहले पानी पिए और 10 मिनट कम से कम प्रार्थना, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग और गहरी सांसों की प्रैक्टिस को दे। फिर पूरे दिन की योजना बनाए, उसे डायरी में लिखे और रोज कुछ एक नई चीज सीखने की कोशिश करे। एक बेहतर दिन की शुरुआत ही बेहतरीन भविष्य की पहली सीढ़ी होती है।

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म से सुन रहे थे अभी आप ही गाना फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल की आवाज में। शंकर एहसान लॉय का संगीत था, लिखा था जावेद अख्तर ने, और आप इसे सुन रहे थे फिल्म संगीत में।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सब आपकी एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
0: आकाशवाणी इंदौर से चल रहा है फिल्म संगीत। दोस्तों, अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा धन है, और इसलिए सफल जीवन के लिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए पूरी नींद यानी कि 6 से 8 घंटे की न्यूनतम नींद जरूर लें, घर का साफ और हेल्दी खाना खाएं, भरपूर पानी पिए, रोज थोड़ा चले या व्यायाम करें, परिवार, बच्चों और पशुओं के साथ समय बिताएं, जिससे आपका सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे।

यारिया फिल्म से सुना भी आपने ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, लिखा था अरशाद कामिल ने, प्रीतम का संगीत था। दोस्तों फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहां हम आज बात कर रहे हैं खुशहाल जीवन के बारे में। और जब बात हो रही है खुशहाल जीवन की, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देख कर दुखी ना होना और उनसे अपनी तुलना बंद करना। ज़िंदगी किसी की भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती दोस्तों। लोग सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां दिखाते हैं पर परेशानियां नहीं, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और अपनी जीवन यात्रा और ग्रोथ पर ध्यान दें, तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी।

शान और अनुष्का मनचंदा के स्वर में सुन रहे थे अभी आप ये गाना, जिसे गाया था कुमार ने, संगीत प्रीतम का था, फिल्म का नाम था गोलमाल 3 और आप इसे सुन रहे थे फिल्म संगीत में जो चल रहा है आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। दोस्तों, एक खूबसूरत जिंदगी के लिए जरूरी है निरंतर बढ़ते और सीखते रहना, इसलिए जब समय मिले किताबें पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, विद्वानों के साथ बैठिए, अपनी बातचीत की कला पर काम करके उसे बेहतर बनाइए जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सके, और बदलते दौर और आपकी रुचि के अनुसार कोई ना कोई नई स्किल जरूर सीखते रहिए। याद रखें, सीखना ही आगे बढ़ना है।

सुल्ताना और ज्योति नूरन के स्वर में सुन रहे थे अभी आप ही गाना। फिल्म का नाम था हाईवे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था, संगीत दिया था एआर रहमान ने और से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में। दोस्तों, एक खुशहाल जिंदगी में एक छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी हर छोटी सफलता और कोशिश पर खुद को शाबाशी दें। अच्छे कपड़े आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, तो अपने कपड़े, जूतों और लुक्स पर ध्यान दें। परिवार और मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और साथ ही प्राकृतिक स्थानों पर बिना सोशल मीडिया और फोटो वीडियो बनाए बैठें, क्योंकि ये आपको प्रकृति के साथ ही अपने आप से जोड़ेगा।

तुम बिन टू फिल्म का ही गाना सुना अभी आपने अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीतकार अंकित तिवारी। दोस्तों तृप्ति के साथ अभी आप सुन रहे थे आज का फिल्म संगीत। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बेहतरीन भविष्य और सफल जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं और ये समय है लोक संगीत का। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरिता मेघार के स्वर में ये कुछ लोकगीत।

ये मालवी पारंपरिक लोक रचना अभी सुन रहे थे आप सरिता मेखार के स्वर में, और इन्हीं के स्वर में सुनवा रहे हैं आज हम लोक संगीत के कुछ लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है सरिता मेखार के ही स्वर में एक और मालवी लोकगीत।

हिमालवी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे सरिता मिखा की आवाज़ में, इन्हीं के स्वर में आज आपको हम सुनवा रहे हैं लोक संगीत के कुछ लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में एक और मालवी लोक रचना।

ये मालवी लोकगीत अभी आपने सुना सरिता मेखार के स्वर में, और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम लाए हैं आपके लिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई कुछ गजलें। लीजिए शुरुआत करते हैं भूपिंदर सिंह की गाई इस गजल के साथ।

कमर जलालवी की ये रचना अभी आप सुन रहे थे। ये गज़ल आपने सुनी भूपिंदर सिंह की आवाज़ में हमारे कार्यक्रम सुगम संगीत में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आज़ाद जुलालत 3 की ये रचना मिताली सिंह के स्वर में।

आज़ाद जलंधरी का ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह की आवाज़ में हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। और इसी के साथ सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रत्नाकर भट्ट का गायन, राग है ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रत्नाकर भट्ट का गायन राग था ललित। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: प्रायोजित कार्यक्रम वदन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं और कुछ ही देर में सुनिए जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से।

0: कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय अन्य शहरों की तरह ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। दिन में बाजार में सन्नाटा पसरा है। लू के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सलाह भी चिकित्सक दे रहे हैं। गर्मी के चलते कई गांवों में पेयजल की भी समस्या बन गई है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा एलईडी प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये प्रचार रथ मंडला पालाघाट होते हुए डिंडौरी जिले पहुंचा, जहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एलईडी प्रचार रथ जिले के सातों विकास खंडों में भ्रमण कर गांव-गांव पहुंचकर आमजन को जनगणना 2027 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देगा और जनमानस में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया को समझने और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से जिले की 23 ग्रामीण नल जल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 90,39,000 रूपये की राशि हस्तांतरित कर महत्वपूर्ण पहल की है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों तक नवीन और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान रथ का 10 दिवसीय संचालन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, उन्नत खेती तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसान रथ के माध्यम से किसानों को ई विकास से उर्वरक वितरण व्यवस्था, खरीफ फसल हेतु बीज उपचार, मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा पराली प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा खरीफ पूर्व खेतों के समतलीकरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने सहित अन्य अपील को आमजन ने सकारात्मक तौर पर लिया है। अब लोग वाहनों का उपयोग कम कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल, स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों की कतार नहीं लगती है, साथ ही अधिकांश बैठकें भी वर्चुअल माध्यम

एक्टिविटी में डांस एरोबिक्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरोबिक्स योग सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही है। डिंडौरी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखण्डों में समारोह पूर्वक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से सम्पन्न कराया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं दी। जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 5,52,638 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ प्रदान, महिला और बाल विकास, पीएचई, जल संसाधन विभाग, इन सभी विभागों के समन्वय से वर्षा के पानी को सहजने के लिए लाखों रिचार्ज पिट, सोखता पिट बनाए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आपने सुनी डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

एमएच हॉटलाइन के सभी सुनने वालों को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुन रहे होंगे आकाशवाणी इंदौर। और हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार है, हमें एक एक करके कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपने फरमाइशी फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमें 2710223 और 2710224 पर। अगर आप इंदौर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 ज़रूर लगाइएगा। और आइए देखते हैं कि पहला कॉल हमारा जो है किसका है, किससे जुड़ रहे हैं हम। हेलो आकाशवाणी एमएच हॉटलाइन, हमारा पहला कॉल तो नहीं, कट हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपना फरमाइशी फिल्मी गीत। इससे पहले हमारी बात हुई थी, हमारा पहला कॉल जो है वो अनिल भंडारी जी का था, तो आइए उनके पसंद का गीत जो उन्होंने सुनना चाहा है वो उन्हें सुनवाते हैं।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना

0: और हम पुकार रहे हैं अपने लिसनर्स को कि कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और सुनिए अपना पसंदीदा गीत। और MH हॉटलाइन में आइए देखते हैं कि हम किससे जुड़ रहे हैं। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार दीदी। कहते हैं घाटा में छुपके, घाटा में छुपके कभी सितारे छाना नहीं होते, और आप जैसे दोस्त मिल जाए तो कभी खपा नहीं होते और कभी छुपा नहीं होते।
0: क्या बात है, क्या बात है। किससे बात हो रही है, आपका शुभ नाम बताइए प्लीज।
1: अब मैं दीदी जान बता दूं, मेरा पता बहुत लंबा चौड़ा रहता है। मैं ग्राम का जिला सत्ताईस जनगण अशोक बाटिका से चार मोहम्मद मजनू दीवाना और हाउस हाफ पैंट बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा।
1: आप भी जान कहा करती हैं हाफ पैंट
0: जी।
2: नमस्कार दीदी जान।
0: नमस्कार, कैसी हैं आप।
2: अरे दीदी जान बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हैं।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, बताइए क्या चल रहा है।
2: इनको तो हम हाफ पैंट कहा करते हैं दीदी जान।
0: जी जी जी, आप आकाशवाणी सुनती है रोज।
1: अरे दोनों लोग मिल कर के रहते हैं, कोई भी काम होता है दीदी जान तो मिल के कर लेते हैं। हम रोटी बना देते हैं, सब्जी बना लेती है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल काम में हाथ बटाना चाहिए, मिलजुल के करने से काम आसान हो जाते हैं।
1: लफड़ा नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, मिल के रहते हैं दीदी जान।
0: बिल्कुल
1: रहते हैं, और आप लोगों के कार्यक्रम सुन करके मुक्त हो जाते हैं जब इंदौर कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। और हम लोग यूट्यूब में वीडियो भी बनाते हैं हिंदुस्तानी कलाकार के नाम से।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रेम से रहिए और आकाशवाणी सुनते रहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: हाँ, अब आप लग ही गए फोन, हम दोनों लोग गुनगुनाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी इजाजत हो।
0: हाँ जी, बताइए बताइए।
1: हाँ, फिल्म का नाम है लैला, और मनमोहन सिंह और लता जी की आवाज में गीत तो गीत के बोल हैं। साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों लैला, मरने से नहीं उतरना।
2: साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों लैला। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आप दोनों की फरमाइश पर लीजिए सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: आकाशवाणी पर चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 2710223 और 2710224 पे। इंदौर का एसटीडी कोड 0731 जरूर लगाइएगा इसके पहले। और आइए अब एक और कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: एमएच हॉटलाइन जी नमस्ते।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। किससे बात हो रही है
1: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा।

0: उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह जी कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
1: जी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में आपके सब कैसे हैं?
0: जी परिवार में सबसे बढ़िया अच्छा बच्चे हैं। मैं बताऊँ आपको, मेरी पत्नी है प्रियंका
1: जी
0: और दो लड़की है मेरी साक्षी और बिंदिया
1: जी
0: और एक लड़का है कृष्णा सिंह सिसोदिया।
1: और आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं कौन सी क्लास में?
0: बिंदिया ने इस साल 10वीं की परीक्षा दी है।
1: अरे बोर्ड एग्जाम्स?
0: हाँ जी बोर्ड एग्जाम, वो फर्स्ट डिवीजन से पास भी हो चुकी है।
1: क्या बात है, शुभकामनाएं आपको।
0: जी और कृष्णा भी अभी 9th क्लास में चला गया है।
1: जी जी
0: वो भी 8वीं की परीक्षा पास हो चुका है।
1: जी
0: जी और आपको बताऊं, जैसे हम खेतों किसानी में काम करते हैं ना,
1: जी जी
0: तो जैसे हमारे बच्चे भी स्कूल से आने के बाद में हमारी हेल्प करते हैं काम में।
1: बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आज के टाइम में बच्चे कहते हैं कि, कहा जाता है कि बच्चे सुनते नहीं है या माँ बाप का हाथ नहीं बटाते हैं, और ऐसे टाइम पर अगर आपके बच्चे हाथ बटा रहे हैं काम में तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुभकामनाएं
0: आपको। हम उनको साथ में लेके आते हैं खेत से, अगर वो थोड़ा बहुत काम करवाने के बाद उनको बिठा भी देते हैं, अगर काम वो सीख जाएंगे साथ में रह के, और बच्चों का भी मतलब अपने ध्यान रहेगा कि अपने सामने बच्चे हैं
1: जी,
0: तो मतलब इससे दो फायदे होते हैं, एक तो बच्चा काम भी सीखता है
1: जी,
0: और अपना बच्चा निगाह में रहता है अपने।
1: जी बहुत सही बात कही आपने, और ये बात से दूसरे भी जितने भी पेरेंट्स है, जितने भी माता पिता है, उनको भी ये संदेश जाता है कि कैसे अपने बच्चों को काम मेहनत सिखाते हुए उनके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है ताकि बच्चे सही राह पर जा सके। सही
0: जी, बिल्कुल अपने साथ में रहेंगे ना बच्चे तो काम भी सीखेंगे, और मतलब उनको ऐसा रहेगा कि मम्मी पापा यहीं है तो मतलब वो पढ़ाई में ध्यान देंगे या मतलब फालतू चीजों में दिमाग नहीं लगाएंगे
1: जी,
0: और मतलब अपने निगाह में रहेंगे तो मतलब बच्चा इसमें अपना सही रास्ते पे रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको?
0: जी फिल्म का नाम है विरासत और गाने के बोले तारे हैं बाराती।
1: बिल्कुल ये मेरे भी पसंद का गीत है और आपके भी पसंद का गीत है, तो खुशी खुशी आइए हमको सुनवाती हूँ विरासत फिल्म का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद
0: जी, थैंक यू सो मच।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। श्रोता हमसे जुड़े रहे हैं और बात कर रहे हैं हमसे, साथ ही सुन रहे अपने फरमाइशी गीत। आइए लेते हैं अगला कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: तितलियां फूलों पे मंडराती होंगी, मोहरों को लुभाती होंगी, याद तो लटपटे जी हम आपको करते हिस्सा भी आपको आती होंगी।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपकी शायरियां ही आपकी पहचान है।
1: जी जी,
0: बहुत ही खूबसूरत शायरी कही। कैसी है आप हसीना जी?
1: अच्छे हैं, हसीना भी मंसूरी बोल रही पालदाना का
0: इंदौर जी। हसीना जी
1: आप लोग भी अनाउंसर सारे ही अच्छे सलामत रहे, क्योंकि आप लोगों से तो हम जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल, आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद। और आपको नाम भी बताने की जरूरत नहीं, अब तो हम आवाज से और आपकी शायरियों से ही आपको पहचान लेते हैं।
1: जी जी, ना तो मैंने पहले नाम बताया ना अभी बताया, मगर आपने पहचान लिया।
0: जी बिल्कुल, यही तो आपका प्रेम है, आप जुड़े रहते हैं हमसे। और देखिए ऐसा रिश्ता कायम हो गया है आकाशवाणी के साथ आपका, कि हम लोग आपको पहचानते हैं, आप लोग इतने प्रेम से हमें कॉल लगाते हैं।
1: जी जी, और बहुत अपनापन लगता है मैडम।
0: जी जी, हमें भी आपका कॉल आता है तो बहुत अपनापन लगता है। और जैसे मैंने कहा
1: जी, 22 तारीख को भी मैंने लगाया था, सब लोगों को मजा आ गया था जब भी मैंने दो शेर शायरी बोली थी तो।
0: जी जी जी, स्थापना दिवस के दिन आपने कॉल किया था।
1: जी जी
0: जी, और आपने स्थापना दिवस के दिन फिर कार्यक्रम सुने या नहीं सुने सारे?
1: पूरे कार्यक्रम सुने ना, मैं 2 घंटे ऐसे बीत गए जैसे कोई 2 पल हो, मतलब 2 घंटे ऐसे बीते जैसे 2 पल हो।
0: क्या बात है, क्या बात है, यही तो प्रेम है आपका। और

0: हमारी कोशिश यही थी, स्थापना दिवस के दिन सारे पुराने उद्घोषक जुड़े थे, काफ़ी सारे पुराने लोग जुड़े थे, सबने अपने अनुभव साझा किए। तो बहुत सारे ऐसे लिसनर्स जो कि श्रोता जो बहुत सालों से सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत खूबसूरत समय रहा ये सुनना।
1: सबसे ज्यादा मजा आया मैडम जबकि, क्योंकि वो ढोल वालों को लेके आए थे ना, बस कुछ बात हो तो ढोल बजा, तो मतलब
0: जी
1: बहुत ज्यादा मजा आया
0: हाँ। अब वो देखिए सेलिब्रेशन का समय था, जैसे हम लोग घर में अपना बर्थडे होता है तो कैसे ढोल नगाड़ों के साथ खुशियों के साथ मनाते हैं, तो आकाशवाणी का
1: जी।
0: बर्थडे भी हम लोगों ने उतने ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया।
1: जी और मालवीय जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, एक नंबर। फिल्म
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको।
1: का नाम है अजूबा और गाने की बोल रहे, ओ मेरा जाने बहार आ गया, मैं तो खिल के गुलाब हो गई, होए कैसा नशा छाया लोगों शबनम शराब हो गई। ये सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद पे सुना रहे हैं ये।

0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं एमएच हॉटलाइन तृप्ति के साथ। अगर आपने अब तक कॉल नहीं किया है तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं बातें और साथ ही सुन सकते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीत। हमारा नंबर है 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड 0731 ज़रूर लगाइएगा। और हमें एक कॉल आ गया है, देखते हैं कौन है कॉल पर। हेलो एमएच हॉटलाइन, हेलो
1: हेलो
0: हेलो एमएच हॉटलाइन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी महेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत सब बढ़िया,
0: बताइए क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हैं?
1: अभी फिलहाल गाने सुन रहे हैं। अभी
0: जी गाने सुन रहे हैं। और घर पे हैं या काम पर हैं?
1: मैं अभी फिलहाल करता हूँ, मेरी ड्यूटी 12 बजे से रात के 8 बजे तक।
0: अच्छा, और फिर ड्यूटी के दौरान आप सुन पाते हैं रेडियो या फिर सिर्फ घर पे सुन पाते हैं?
1: नहीं नहीं मैडम, मोबाइल एक पे मेरा काम,
0: मोबाइल से आप पूरे समय सुनते रहते हैं आकाशवाणी जी। और जी जी जी, रेडियो से थोड़ा सा दूर रखिए, रेडियो पे अगर आप सुन रहे हैं तो। अच्छा, आप कितने टाइम से आकाशवाणी सुन रहे हैं, कब से जुड़े हुए हैं? क्या बात है, तब से लगातार आप आकाशवाणी सुन रहे हैं।
1: जी जी, मेरे पत्र भी आते हैं मैडम आपके।
0: अच्छा, और पत्र भी आते हैं, पत्र भी लिखते हैं। और घर में सिर्फ आप ही सुनते हैं या घर परिवार के सभी लोग सुनते हैं?
1: नहीं, घर के परिवार भी सब सुनते
0: हैं। जी जी, तो कौन सा पसंदीदा कार्यक्रम है आपका?
1: हमारा तो सभी कार्यक्रम पसंद है।
0: फिर भी कोई कार्यक्रम जो ज्यादा पसंद हो?
1: ये हमारा है।
0: जी, मतलब आपको फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं।
1: जी,
0: ठीक है, बताइए आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए?
1: वो फिल्म हम जोली फिल्म का गाना सुना दीजिए मैडम।
0: जी, हम जोली फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: वो कैसा आया जमाना, बाप ने बेटे की ना मानी।
0: जी चलिए, आपकी पसंद पे सुनवाते हैं आपको हम जोली फिल्म से ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हरिओम हरिओम हरिओम।

और प्रेम कल्पनाओं तक होता है। उस घर को बस राम बचाए, घर का

तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे।

0: पड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
2: यू मैं क्या बोलूं जी,
3: यू टेल मी,
1: आई डोंट नो,
3: यू टेल मी मैं क्या बोलूं जी।
4: एमएस शॉर्ट लाइन में आइए अब ले लेते हैं हमारा अगला कॉल, देखते हैं कौन है कॉल पर। हेलो एमएच हॉट लाइन,
5: हेलो,
4: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
5: हीरू पड़ियार बोल रही हूँ बाग से।
4: हीरू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसी हैं आप?
5: हम बढ़िया, आप कैसे हो?
4: एकदम बढ़िया आपकी तरह। आप थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर होके बात कीजिए ताकि हमें यहाँ पर परेशानी ना हो सुनने में।
5: जी,
4: और घर पे कौन कौन सुन रहा है?
5: घर पे हम दो मियाँ बीबी थे।
4: अच्छा अच्छा, और आप क्या करती हैं?
5: मैं यहाँ दुकान लगाती हूँ खाने सामने।
4: अच्छा, किस चीज की दुकान लगाती हैं आप?
5: ये टोस्ट है, बिस्कुट, चॉकलेट, चाय,
4: चाय की
5: कटलरी।
4: अच्छा, तो चाय का तो अभी गर्मियों में कितना चाय के ग्राहक आते हैं, मतलब चाय पीते हैं लोग या फिर चाय अभी कम हो गई है लोगों की?
5: हम घर पीते चाय पर है, यहाँ अस्पताल खुले नहीं है, सरकारी अस्पताल हमारे पास में।
4: जी जी,
5: वगैरह आते तो उनके बनाने देते हैं।
4: जी जी जी जी, अच्छा बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
5: वो भला है बुरा है मेरा पति देवता है।
4: तो ये आपके पति देव के लिए ये गाना?
5: हाँ, पति देव के लिए।
4: वो भी सुन रहे हैं ना?
5: हाँ, ये भी सुनते हैं आपके सब, हम रेडियो के सब सुनते रहते हैं। हम दूसरे को टीवी वगैरह कहीं नहीं करते हैं, फ्लाइट भी नहीं है, टीवी नहीं है, पंखा नहीं है, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है।
4: अरे अरे, तो पूरे दिन का आपका साथी जो है वो रेडियो और आकाशवाणी है?
5: रेडियो बस, हम दूसरे कहीं नहीं सुनते, बस आकाशवाणी रेडियो सब ये सुनते रहते हैं।
4: जी क्या बात है, आपका प्रेम है ये तो। चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गाना जो आपके पति देव के साथ मिलके सुने। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: और ये फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे थे MH हॉटलाइन पे। हम एक के बाद एक फरमाइशी गीत सुनने के लिए लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 2710223 और 2710224 पे। देखते हैं अगला कॉल किसका आया है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो जी,
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है
1: जी? धन्यवाद। मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं अरविंद जी आप?
1: श्रीनगर जिला महोबा यूपी से।
0: यूपी से बोल रहे हैं। कैसी गर्मी है यूपी में अभी?
1: बहुत प्रचंड गर्मी है मैम।
0: हाँ, वैसे तो पूरे देश में प्रचंड गर्मी है, पर यूपी में स्पेशली बहुत ज्यादा गर्मी होती है हमने सुना है।
1: जी, हमारे बगल में बांदा में पूरे देश का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 47.6।
0: अरे अरे, तो ऐसे समय में आप खास, आप और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए, क्योंकि अभी नौ तपा भी चल रहा है और ऐसे समय में लू चलती है और काफी परेशानी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को बाहर ना, जहाँ तक हो सके ना जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी, मेरी किराने की दुकान है।
0: जी जी, और वहीं पर
1: बैठे बैठे आपको सुनता हूँ आपको।
0: जी जी जी, तो बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको?
1: जी, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।
0: जी, इस फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे आप?

0: में जुड़ रहे हैं हमसे एक के बाद एक लिसनर्स, और अगला कॉल देखते हैं किसका है। हेलो एमएच हॉटलाइन, हेलो,
1: हेलो
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैं रतनलाल सुसार बोल रहा हूँ। मैं
0: रतनलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया हूँ, बताइए क्या चल रहा है?
1: मेरे को धरती का है पाको पुकार का गाना सुनना है,
0: जी
1: और नाम लेना चाहूंगा मैं
0: जी किन के नाम लेना चाहते हैं आप?
1: हमारे परिवार का।
0: जी, आपका परिवार अभी बैठ के साथ में सुन रहा है?
1: हाँ है ना,
0: जी बताइए कौन?
1: राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं, छोटी सावली राजस्थान से,
0: राजस्थान से
1: बांदा।
0: बोल रहे हैं। राजस्थान में गर्मी कैसी है अभी?
1: गर्मी बहुत तेज है यहाँ पे। हाँ
0: जी, राजस्थान में तो गर्मी होती है, बट अभी और नौतपा स्टार्ट होने के बाद गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए आपका, अपना और अपने परिवार का। बताइए परिवार के किन लोगों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: मैं परिवार का नाम लेना चाहूंगा, हमारे बच्चे हैं भारती सुथार, आशा सुथार,
0: जी
1: हिमांशु सुथार,
0: जी
1: और
0: जी
1: उसके पापा है दीपक जी सुथार और पंकज जी सुथार, नया गांव केसरपुरा।
0: जी, चलिए इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ये आज ही आएगा कि कल?
0: अभी आएगा, आप अपना रेडियो सेट चालू रखिए।
1: जी जी जी
0: जी, धन्यवाद।

0: और अब इसी गीत के साथ संपन्न होता है फरमाइश फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। तृप्ति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है छाया पाठक ने।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारा फोन नंबर है 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमें प्रतिदिन आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो,
2: गाना सुना दीजिए।
1: जी गाना तो सुनाएंगे आपको, अपना नाम तो बताइए।
2: हरदयाल जाटव, जिला सेती, मध्य प्रदेश।
1: पूरा नाम फिर से बताएं।
2: हरदयाल जाटव।
1: हरदयाल जाटव।
2: हरदयाल जाटव
1: कहाँ से हैं?
2: सेपरी से, जिला सेपरी।
1: जिला सेपरी से जी। अब बताएं कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: हमको सुना दी अजनबी।
1: अजनबी फिल्म का?
2: हाँ, अजनबी का इंतजार, अजनबी से प्यार है।
1: सीपरी में आप क्या करते हैं?
2: इस टाइम तो गर्मी है, गर्मी के मारे अभी फ्री है। अभी
1: गर्मी के मारे सब फ्री हैं?
2: हाँ।
1: तो खेती किसानी करते हैं?
2: हाँ जी
1: जी। चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: जी जी।

0: मध्य प्रदेश से फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: जी, हृदय से धन्यवाद
0: जी। नाम बताएं अपना।
1: जी। मैं आपका शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? मौसम कैसा है आपके यहाँ?
0: बहुत अच्छा मौसम है, आप बताइए। बस मौसम तो इस समय बस सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, उफ इतनी गर्मी है ना।
1: जी निसंदेह, यहाँ
0: हाँ
1: मथुरा में यही हाल है।
0: सब
1: जबरदस्त गर्मी
0: जी,
1: हो रही है,
0: सभी जगह
1: चमचमाती हुई
0: यही
1: धूप
0: हाल हो
1: रहती
0: रहे
1: है,
0: हैं,
1: गर्म गर्म हवाएं चलती
0: सब
1: हैं।
0: बेहाल हैं उससे।
1: जी, लू के प्रकोप में है इस वक्त मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज क्षेत्र।
0: जी, बताएं आज क्या फरमाइश आपकी है।
1: आरुणी दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है बाबरची,
0: बावर्ची फिल्म।
1: भोर आई गया अंधियारा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत है।
0: तो इस समय तो दोपहर है
1: जी, जब ये प्रसारित होता है तो भोर ही रहता है, 11 बजे तो हम
0: तो
1: भोर ही
0: आप
1: मानते हैं,
0: नहीं, तो
1: गुड
0: हमारा
1: मॉर्निंग
0: हमारा
1: बोलते
0: रेडियो
1: हैं,
0: का
1: सवेरे
0: प्रसारण
1: बोलते
0: तो
1: हैं।
0: सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाता है, आप देर से आरंभ करते होंगे, है
1: जी,
0: ना।
1: जी
0: हाँ, सुबह से सुना करिए, सुबह से ही कार्यक्रम हमारे, सुबह 6 बजे से हमारा रेडियो आरंभ होता है जो रात के 11 बजे तक लगातार चलता है।
1: जी निसंदेह, आप
0: सुनिए।
1: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्र सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं। जी
0: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

लाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चरैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा रा

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: मध्य प्रदेश के देवीदास वड़ीले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: देवीदास जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी मैडम जी, आज मुझे गाना सुनना है। ये फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।
0: जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कौन सा
1: गायकार है? नितिन मुकेश
0: जी।
1: और गीत के बोले जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोएगा वही पाएगा।
0: ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं, कर्मों का फल हमको यही मिल जाता है ना।
1: जो करने की हो तो जो जैसी करनी वैसी भरनी होती है मैडम जी।
0: हाँ ये बात सही है। आप अपने जीवन में लागू करते हैं?
1: बिल्कुल मैडम जी, मैं तो बिल्कुल अमल करता हूँ।
0: करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मैडम जी। और वो श्रोता सुनते उनको भी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो भी अपनी बात को अमल करे। कोई भी काम अपने से गलत ना हो,
0: गलत ना हो, किसी के लिए बुरा ना करे,
1: किसी का बुरा ना करे, ना बुरा होए,
0: ना बुरा होए के लिए तो ईश्वर देखिए अच्छा बुरा दोनों करता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए हम।
1: कहते ना मैडम जी, बुरा जो देखण में गया बुरा ना मुझसे होए।
0: जी,
1: जो दिल खोजा अपना बुरा ना मुझसे होए।
0: बिल्कुल, मुझसे बुरा ना कोई।
1: जी
0: चले, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। हेलो।
1: हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ कश्मीर से।
0: थोड़ी आवाज ऊंची रखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल।
1: जी मैं सुनील गर्ग बोल रहा हूँ कटनी से।
0: कटनी से
1: जी,
0: कटनी के हालचाल सुनाए कुछ।
1: बस यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही है।
0: आपके यहाँ ही नहीं, सभी जगह गर्मी बहुत तेज पड़ रही है।
1: हाँ,
0: क्या उपाय करते हैं आप गर्मी के लिए? फिर
1: क्या है, अपन तो घर ही में रहते हैं तो निकलते ही नहीं है,
0: बाहर नहीं निकलते।
1: 5 बजे के बाद निकलते हैं शाम को, तो जाके अपनी दुकान खोल लेते हैं।
0: काय की दुकान है आपकी?
1: राशन की दुकान है।
0: राशन की दुकान है, तो दिन में बंद रखते हैं?
1: हाँ, गर्मी की वजह से भी, और हमारे ग्राहक जो है वो केवल रात्रि में है, 5 से 8 बजे तक खुलते हैं।
0: तो सुबह भी आप नहीं खोलते दुकान?
1: नहीं नहीं नहीं, हम ऑफिसर को भी मालूम है हमारे कि ये दोपहर में नहीं खोलते।
0: चलिए अच्छी बात है, बताएं क्या गीत सुनेंगे आज?
1: आप अब्दुल्ला पिक्चर का सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं।
0: सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार जी।

0: हाँ जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
0: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: महाकाल के लोक से बोल रहे हैं आप?
0: जी जी, महाकालेश्वर जी की नगरी है उज्जैन और महाकाल लोक कॉरिडोर भी बना हुआ है उज्जैन।
1: तो अभी गर्मी में कुछ व्यवस्था वहाँ पर हुई है ना, ऐसा सुना है?
0: बिल्कुल मैडम जी, ये मंदिर के आसपास जो भी दर्शनार्थी आते हैं सभी उनके बैठने की व्यवस्था भी रहती है और साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता जो रहते हैं उनमें जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था,
1: ठंडे पानी की व्यवस्था है?
0: जी बिल्कुल। और एक सामाजिक संस्था है जो जितने भी एक गाड़ी घूमती है उसमें सभी जगह जो यात्री रहते हैं उनके लिए पानी पिलाने की और बॉटल भरने की व्यवस्था भी, चलित वाहन है वो।
1: अच्छा, और मतलब गर्मी से बचाव के लिए जो लाइन लगती है
0: जमीन पे भी कॉलिन बिछा रहता है और टेंट लगा रहता है और ऐसे तो सारा परिसर बिल्कुल जो आसपास का है वो जो बना हुआ है मतलब उसमें गर्मी नहीं लगती है और पानी पीने की व्यवस्था साथ में कूलर भी लगे रहते हैं।
1: जी जी।
0: और जितने भी जो कॉरिडोर के अंदर जो घूमते हैं ना, बीच में रास्ता है जो जाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि घुमावदार रास्ता बना हुआ है, तो उसमें सब जगह पानी पीने की व्यवस्था भी रहती है।
1: चलिए बताएं आज क्या गीत आपको सुनवाए?
0: गाना सुनना है मैडम मुझे ये जब जब फूल खिले, ये समा समा है ये प्यार का।
1: जी बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया
0: जी मैडम,
1: सुनिएगा आपकी पसंद का गीत।
0: एक महीने के बाद में फोन लगाया है मैंने।
1: बहुत अच्छी बात है, आप जैसे जागरूक श्रोता ही तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देते हैं।
0: जी मैडम, हम तो सालों से जुड़े हुए हैं, बचपन से मतलब आकाशवाणी भोपाल को सुनते आ रहे हैं, पहले रेडियो के माध्यम से सुनते थे, अब डिजिटल ऐप के माध्यम से सुनते हैं और आपका प्रोग्राम तो डीटीएच पर भी जो फ्री टू एयर है ना उसपे साफ स्पष्ट क्वालिटी में सुनाई देता है मैडम।
1: इससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते रहिए, हम यही चाहते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हाँ मैं राजेश अग्रवाल बोलता हूँ दीदी, देवास मध्य प्रदेश, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश। आप
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कौन बोल रहे? अच्छा
0: छाया पाठक।
1: छाया जी। हाँ तो मैं मनोरंजन फिल्मों का गीत है, आया हूँ मैं तेरे लिए तुझको ले जाऊंगा, ऐसा गीत है। मैं अपने किशोर दा और आशा भोसले की आवाज में, संजीव कुमार साहब की पिक्चर है ये जी, और आरडी बर्मन शायद म्यूजिककार है, इसके मतलब संगीतकार है
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको इतनी जानकारी है कि
1: जी।
0: गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, गायक
1: हाँ
0: और किस
1: बिल्कुल,
0: पर
1: ये तो हम
0: फिल्माया
1: तो
0: गया है।
1: 40-45 वर्षों से सुनते आ रहे हैं ना।
0: जी चलिए, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार
0: फोन करेगी सुने?
1: जी। हाँ, फोन करें, गीत सुने।
0: हाँ मैडम, मैं जसराम जाटव बोल रहा हूँ, जोराई से। हाँ
1: जसराम जाटव, जौराई से। जौराई कहाँ पड़ता है?
0: जिला सीपी में।
1: जिला सीपरी में।
0: हाँ मैडम,
1: अच्छा, वहाँ पर आपका क्या कारोबार है?
0: बस कुछ नहीं मैडम, खेती किसानी करती हूँ।
1: खेती किसानी। खेती किसानी से अभी फुर्सत है या कुछ वहाँ पर अभी बोया हुआ है या कुछ काम लगा है आपका?
0: नहीं मैडम, क्या है, अब तो गर्मी का टाइम है तो अब तो कुछ काम नहीं है। अपना काम जो जून से चालू हो जाएगा।
1: जून से चालू हो जाएगा। पानी की कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ?
0: पानी की व्यवस्था मैडम, हमारे यहाँ कुआ की व्यवस्था है, कुआ है।
1: कुआं है तो कुएं में अभी पानी पूरी गर्मी में रहता है?
0: नहीं मैडम, गर्मी में नहीं रहता है।
1: अच्छा,
0: क्या मैडम, गेहूं गेहूं की खेती करा देता है, गर्मी में नहीं रहता पानी उसमें।
1: तो आप लोगों ने सबका मिलकर के कुआं है या आपका अकेला कुआं है? वो
0: तीन तीन भाई हैं।
1: तीन भाई हैं।
0: हाँ
1: अच्छा, तो आप उसके कुएं में पानी पर्याप्त रहे उसके लिए आपने कुछ प्रयास करते हैं आप लोग?
0: प्रयास तो मैडम अभी नहीं किया, प्रयास करेंगे।
1: करेंगे उसको, और या तो गहरा खुदवाइए, उसके
0: हाँ हाँ मैडम,
1: आसपास
0: वो क्या है,
1: पेड़
0: गहरा
1: पौधे,
0: खुदवा
1: आसपास
0: लेंगे तो
1: पेड़
0: इसमें
1: पौधे
0: पानी
1: लगाइए।
0: रहेगा।
1: जी
0: अरे इसमें गहरा हो जाएगा तो पानी रहेगा ना इसमें।
1: हाँ, रहेगा, साथ में आसपास पेड़ पौधे लगाइए, है ना? ये
0: हाँ वो
1: व्यवस्था
0: तो
1: भी
0: फिर सही है मैडम।
1: जी, थोड़ा व्यवस्था करेंगे तो आप ही के लिए सुविधा रहेगी, आपके साथ साथ गांव वालों का भी भला होगा, कभी उनको ज़रूरत है तो उनके लिए भी आप पानी दे सकेंगे।
0: हाँ वो तो फिर सही है मैडम।
1: जी बताएं, क्या गीत सुनना चाहेंगे?
0: हमको मैडम सुनना है खयामत फिल्म का गाना सुनना है मैडम। खयामत
1: कौन सा?
0: फिल्म का सुनना है, लड़की बहुत याद आती है।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका क्या रेडियो चल रहा है?
1: जी हाँ।
0: रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए या आप उससे दूर हो जाइए। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कोदूलाल जायसवाल, पोस्ट मुकाम भैसवाही, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी।
0: जी आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं
0: हाँ,
1: आप कौन मैडम बोल रही हैं सर?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं अभी इसी वक्त से।
0: इसी वक्त नहीं, कल।
1: कल धड़कन का दिल में ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
0: चलिए सुनिए अब आप गीत। नमस्कार।

0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नए श्रोताओं और नए साथी के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिन्दी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये पुस्तिका एक व्यवहारिक डिजिटल टूल किट के रूप में भी कार्य करती है। और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पनीर सेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपने हमें चिट्ठियां भेजी हैं और आपके गाने हमने तैयार कर लिए हैं। पहला गीत हम ले रहे हैं दो बदन फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, शकील बदायूनी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा से दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं हम ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है आप सभी की पसंद पर और जिसे हम सुनवा रहे हैं। आपने चिट्ठियां भेजी हैं गौतम नगर भोपाल से केएल पंजाबी, कमलेश पंजाबी, आशा राय जादा ने, अनिल श्वेता पंजाबी ने, उज्जैन से सुनील पंजाबी और शिल्पा पंजाबी ने, राजेश पंजाबी भोपाल से, डॉक्टर किरण ग्रोवर, डॉक्टर नरेश ग्रोवर ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर के साथ अमित कुमार ने, आनंद बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है और राहुल देव बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:11 हुए हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दो कलियां फिल्म से। लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। आप सभी ने ये पत्र लिखे हैं मुझे और ये गीत सुनने की फरमाइश की है। भोपाल से विनोद आर्य, शांता आर्य, सीमा विनय अग्रवाल, मृदुल मीनू आर्य, अतुल विनीता अग्रवाल, नेहल, ऋत्विक सात्विक, अवि अनु अग्रवाल ने। तो आप सभी की पसंद पर ये गाना हम आपको भेज रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना। लीजिए अगला गीत हमने पसंद किया है आपकी पसंद पर, दो बूंद पानी से ये फिल्म का गीत है। परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम ने इस गीत को गाया है और साथी भी हैं। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है और जयदेव ने इसका संगीत तैयार किया है। इस गीत को पसंद किया है ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा, अक्षरा अनुष्का शर्मा ने भोपाल से। इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पांचोलिया, प्रियंका पांचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पांचोलिया ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। मैं हूं आपके साथ साधना और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म में लता मंगेशकर को गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। आप सभी श्रोताओं ने हमें चिट्ठियां भेजी हैं। भोपाल सुभाष नगर से सुनील जैन, सुधीर, सारिका जैन, साहिल, अंकिता जैन, समीर, कृतिका जैन, सौम्या, शुभ्रा सम्यक और वेबी शार्बिल ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश, मैं थी आपके साथ साधना जैन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
8: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
8: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा,
8: क्यों क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
8: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
8: ये हुई ना बात।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
10: इस समय आप हैं हमारे साथ।
11: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
8: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा,
8: क्यों क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
8: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
8: ये हुई ना बात।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, इसमें सुनिएगा सिसकियों का भाग एक।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो?
1: क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो, रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे अरे, ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। अभी इसे ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी, बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है, और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बखूबी जानती है।
1: अरे अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आँख खुल जाएगी।
0: अजी कहाँ की बात कर रहे हो,
1: अब
0: हमारी बहू तो सुबह ही उठ गई।
1: हा?
0: वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: अरे अरे भाई, ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी अभी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
0: अजी मैंने कुछ नहीं कहा उससे, वो खुद उठी है। और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे। उसकी माँ फाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो, सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है, अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
0: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की, वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
1: अरे उस पाता के बारे में तो बस क्या कहूँ, अरे गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
0: हाँ।
1: बाप रे फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे वो तो मेरी बहन है, इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना वरना नाकों चने चबवा दे। अरे तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो, ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
0: लाहौल बिलाकुवत, क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो। अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
1: हाँ जी चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ, सारे तो बच्ची है, अरे अपने मामा की बात का क्या बुरा थोड़ी मानेगी वो।
0: खैर छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
1: अरे जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है, अरे कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
0: हाँ जी,
1: अरे खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
0: हाँ चलो निकाह तो हो गया, अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे। निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
1: अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना देखना तुम, अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है, उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे देखना देखना एक दिन तुम, बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ, चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
0: हाँ हाँ, अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है, वरना वो भी आज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता।
1: उसका तुम ना मतलब उसका मेरे सामने।
0: अरे क्या हो गया? अब तो उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
1: अरे नूरी से शादी करके कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब
0: क्यों, अब क्या हो गया? मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? तुमने आकर कुछ बताया ही नहीं था।
1: अरे क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक में दम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने मैके में, मैंने उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
0: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी। औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
1: देखो ये, अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ पता नहीं तुम्हें? अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है। अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
0: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है। मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
1: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है।
0: हाँ हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
1: ठीक है आओ, लो
2: लो।
0: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
1: अरे
0: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो। अभी तुम जाओ जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूँ?
1: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है। देखो आखिर जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है, अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है।
0: हाँ सारे, अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
1: देखो बेटी देख लो।
0: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई ये नहीं मानेगी, देखना अब तुम, ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
1: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय। अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ी मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है।
1: अजी पहले एक घूंट पी तो लो, चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
0: अरे साराय, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
1: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है। और वैसे देख रही हूँ आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
0: सोच रहा हूँ कि आज जाऊं ही नहीं।
1: क्या?
0: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
1: शादी को अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
0: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दें। सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
1: बस बस, आप छुट्टी का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
0: अरे बाप रे,
1: क्या हुआ?
0: आज तो बहुत देर हो गई सारा है। अच्छा मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊं, जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
1: हाय अल्लाह, नहीं नहीं, उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
0: अच्छा, ये सब बातें दोपहर को करेंगे।

0: अरे क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूं ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए, और एक दिन के लिए भी नहीं आई अपनी माँ से मिलने।
0: अरे अगर वो नहीं आई है तो तुम जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई का घर है।
1: हाय अल्लाह, तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा। जब देखो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
0: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना प्यार मिला है।
1: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
0: अरे मुझे पता नहीं क्या फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो, और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
1: क्यों, क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
0: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास दो दो गायें हो गई हैं। मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
1: ऐश कर रही है। अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहां महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
0: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
1: शर्म कैसी जी, जो बात सही है वो सही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखा नहीं है गांव की और लड़कियां कैसे अपने शौहरों और सास ससुर को अपने कब्जे में किए रहती हैं? हमारी सारे तो इतनी सीधी है कि फंस गई होगी उनके चंगुल में।
0: अरे तू पगला गई है क्या? तेरे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि वो वहां खुश है?
1: या खुदा, अजी अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूं। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुप भुन्नी औरत है। बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है। और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
0: ओहो, वहां पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं। उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
1: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो। जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
0: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो।
1: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
0: ओफो, देखो बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
1: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: अम्मा।
1: हाँ बहू।
0: अम्मा, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी दरगाह शरीफ चलती तो अच्छा होता।
1: नहीं बहू, तुम लोग जाओ दरगाह पर और दीप जला कर आओ, जाओ।
0: लेकिन अम्मा, आप घर का सारा काम करेंगी, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
1: तुम इसकी फिक्र मत करो बहू, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। जाओ, आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ, जाओ।
2: अब चलो भी साराय, बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहाँ से।
0: हाँ हाँ चलते हैं जी, इतनी जल्दी किस बात की है।
2: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी।
0: अच्छा बताओ तो जरा क्या बात है।
2: अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा।
0: ओफो मुश्ताक, आप बहुत खराब हैं।
2: अच्छा बाबा, अब चलो यहाँ से, चलो।
0: चलिए। मुश्ताक, देखो कितना अच्छा लगता है ना, इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना। कितनी खूबसूरत दरगाह है, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: साराय।
0: हाँ।
2: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो।
0: हाँ मुश्ताक, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे अगर इसकी खूबसूरती का जरा भी अंदाजा होता ना, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज आती।
2: अच्छा चलो, अब दरगाह में अंदर आओ, रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा।
0: हाँ, चलिए।
2: लो साराय, मैंने तुम्हारा दीप जला दिया, इसे वहां ले जाओ। अरे जाहिल औरत, इसने तो दीप बुझा दिया।
0: मुश्ताक, ये तो अपशगुन है, ये ठीक नहीं हुआ।
2: अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं, फिर जल जाएगा।
0: नहीं मुश्ताक, ये अच्छा नहीं होता। मेरी एक सहेली का दीप भी इसी तरह बुझ गया था। उस बेचारी का 1 महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक।
2: अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है। बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, आओ इधर आओ। वो देखो, तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं।
0: हाँ सही कहा आपने, वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप।
2: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते। ये देखो, ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई।
0: लाओ मुझे दो, मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा। मुश्ताक, अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ।
2: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग अब निषाद बाग जा रहे हैं।
0: क्या निषाद बाग जा रहे हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ मुश्ताक, आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं आप।
2: बस बस बस, इतना मक्खन मत लगाओ। मुझे मालूम है कि तुम आज तक निषाद बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन था। और इसीलिए मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ।
0: मुझे पता है, हम कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर?
2: बस समझो कि पहुंच ही गए।
0: हाँ?
2: वो देखो सामने बाग की रौनक नजर आई।
0: हाँ? क्या क्या यही निषाद बाग है?
2: हाँ।
0: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
2: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लोगी क्या, किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना। अब देखो सारा नजारा कैसा लगा।
0: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक, यहाँ लड़कियाँ देखो ना कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? कैसी गंदी लग रही हैं।
2: अरे सारे ये तो आजकल का फैशन है।
0: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
2: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
0: क्या?
2: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं। और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी ला कर दूंगा।
0: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
2: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा। अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
0: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
2: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख, क्या लड़की बैठी है। अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
3: अरे गुलाब लेने गया होगा। वैसे यार
4: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। विजेता टीम शुक्रवार को

0: दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। महिला सभा कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम जानते हैं कि आप समय और पैसे की बचत में माहिर हैं और ऐसी ही सीख आप अपने नौनिहालों को भी दे रही हैं। जाहिर सी बात है, हमारे बुजुर्गों की यह सीख हमेशा उपयोगी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। खर्चे जब आय से अधिक हों और गैर जरूरी हों तो वो फिजूल खर्ची ही तो मानी जाती है ना। हमारी जरूरतों की और ख्वाहिशों की कहीं कोई सीमा नहीं होती, हमें उनकी सीमा तय करनी पड़ती है। अपनी आय के मुताबिक व्यय और बचत की आदत तो डालनी ही चाहिए। जरा विचार तो करें कि पैसा तो आया पर गया कहाँ। वेतन मिलते ही एक बजट बनाना जरूरी है सखियों। आपातकालीन बजट हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। सुविधाजनक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, ये बचत बढ़ाने में मदद कर सकता है। हर 15 दिन में खर्चों का हिसाब जरूर देखें। और हाँ, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे निवेश की आदत को भी अपनाएं। वित्तीय अनुशासन हमें आत्मविश्वासी बनाता है। अपने भविष्य, अपने सुखद सपनों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी बचत ही हमारे आड़े वक्त की सबसे बड़ी साथी है। जरूरत पर हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना। अब यही सोच रही है ना आप कि अब तो सुविधाओं के ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट के आदि हो गए हम, क्या करें, ये आदत तो अब दूर ही नहीं होती। तो हमारा ये कहना है, अच्छी आदत की शुरुआत कभी भी शुरू की जा सकती है, आज से ही और अभी से ही। बजट बनाते समय 50-30-20 का फार्मूला अपनाएं। 50% जरूरी कामों में, 30% घूमने शौक वगैरह में और 20% बचत के लिए सबसे पहले निकाल कर अलग रख दें। अब कुछ खर्चे तो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें सीमित रख सकते हैं। जैसे बिजली के खर्च को सीमित रखना तो हमारे हाथ में ही है। 5-स्टार रेटिंग के उपकरण ही इस्तेमाल करें, एसी का कम इस्तेमाल करें। ईएमआई की सुलभता तनाव को लाती है सखियों। विचार विमर्श के बाद ही ईएमआई पर कोई सामान लेने का निर्णय लें। अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें कि पिछले महीने कौन सा खर्च फिजूल ही हुआ, जिसके खर्चे से बचा जा सकता था। ऐसी बातों पर संकोच नहीं करें। अपनी नासमझी पर हंस भी सकते हैं आप और अगले महीने की बैठकर परिवार के साथ प्लानिंग बनाएं। सच तो ये है सखियों कि हम अपनी मुस्कुराहट को जी भर कर खर्च करने में कतई संकोच न करें। इसे जी भर कर लुटाइए, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट जो है ना, वो खुशबू की तरह बिखर कर औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है।

0: और सखियों, हम जानते हैं कि गीत सुनने की तरह ही आपको कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा कथानक हो, एक सुखद अंत हो और दृश्य इस तरह से रचे गए हों कि ऐसा लगे हम तो इस कहानी के साथ ही चल रहे हैं। ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी लेकर आज हम आपके लिए आए हैं, वो सांवली लड़की। ये शीर्षक है इस कहानी का। कहानीकार हैं सुप्रतिष्ठित कहानीकार सुश्री नीरजा वर्मा।
1: रोज शाम को अपने कमरे की बालकनी में बैठे हुए आते जाते लोगों को देखना मेरा प्रिय शगल था। बुजुर्ग सजी धजी महिलाएं, हंसते खेलते हुए बच्चे, सभी तो गुजरते थे घर के सामने से। इन्हीं सबके बीच एक सांवली लड़की भी थी जिसे मैं रोज देखती थी। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक नजरें उसका पीछा करती थीं। एक दिन उसने नजरें ऊपर उठाई और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस दिन के बाद से कई बार हम लोगों की नजरें आपस में टकराती और इस प्रकार हम लोगों के बीच एक मौन रिश्ता बन गया था। किसी दिन उसे रास्ते से जाते हुए नहीं देखती तो दिन खाली खाली लगता। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर रोज उसका इंतजार जरूर रहता था। कई दिनों से अब उसके साथ उसी की उम्र का एक नौजवान भी कभी कभी उसके साथ दिखने लगा था, शायद उसका दोस्त था। उन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगता था। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जाते दिखते थे। उन दोनों को देखकर मुझे अतीत की यादें सताने लगती थीं। मुझे भी अपने वे दिन याद आ जाते थे जब मैं अजय के साथ होती थी। आज याद आ रहा था वो दिन जब मैं अजय के साथ एक प्रदर्शनी देखकर वापस आ रही थी और रास्ते में एक बारात देखकर अजय बोल पड़ा था, भाई हम तो शादी करेंगे तो बड़ी सादगी से, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ अपने कुछ लोग और तुम्हारे जैसी कोई लड़की जो अपनी सादगी से सबका मन मोह ले। उस समय अजय की आंखों में अपने लिए चाहत देखकर मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि जिंदगी का सफर साथ तय करना चाहते थे, पर हम दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अपने घर वालों को समझा पाते या उनके विरोध की परवाह ना करते हुए कोई कदम उठा पाते। और फिर वही हुआ जैसा कि आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। मेरी शादी तय कर दी गई और फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि पीछे मुड़कर देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज भी एक कसक है मन में अपना मनचाहा जीवन साथी ना पाने की। कुछ दिनों से लड़की फिर अकेली दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा हो रही थी कि क्या हुआ, उसका साथी दोस्त वो लड़का कहाँ गया, अब वो इसके साथ क्यों नहीं दिखता। कई सारे सवाल दिमाग में घूमने लगे थे, पर पूछूं तो कैसे। आज तक

0: उससे कभी बात की नहीं थी। फिर सोचती, मुझे क्या करना, क्यों मैं उसके विषय में इतना सोचती हूँ, क्यों उसके बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन मन था कि मानता ही नहीं था, शायद उसमें मैं अपना अतीत देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। जब वो शाम को दिखाई दी तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो वो लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर मेरी बालकनी के नीचे आकर खड़ी हो गई। मैंने बालकनी से ही उससे जीने की ओर इशारा करते हुए ऊपर आने को कहा। जैसे ही वो ऊपर आई, मैंने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटी, अगर ऐतराज ना हो तो कुछ देर मेरे पास बैठोगी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मेरा स्नेह देखकर वो सकुचाते हुए बैठ गई। शायद उसे लग रहा था, आ तो गई हूँ पर अनजान घर में अनजान महिला से क्या बात करूँ। मैंने उसकी स्थिति को समझते हुए उससे प्रश्न किया, बेटी कहाँ रहती हो, रोज तुम्हें जाते हुए देखती हूँ, कई बार सोचा कि तुम्हें बुलाकर बात करूँ, फिर लगा पता नहीं तुम क्या सोचो, पर आज रहा नहीं गया इसीलिए तुम्हें बुला ही लिया। आंटी, मेरा नाम आरती है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहती हूँ, मेरे ऑफिस से वापस लौटने का समय होता है ये, मैं भी रोज आपको देखती हूँ, कई बार जब आप बालकनी में नहीं होती तो सोचती थी कि काम में व्यस्त होंगी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आरती ये कहते हुए थोड़ी सहज हो गई थी और थोड़ी देर बाद तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बातों में ही पता लगा था कि वो नौजवान उसके ऑफिस में ही काम करता है और चूंकि उसके घर के ही पास रहता है इसलिए वे लोग कभी कभी साथ ही ऑफिस से घर लौटते हैं। धीरे धीरे आरती मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अब वो कई बार मेरे पास आ जाती थी, अगर किसी कारण से नहीं आ पाती तो रास्ते से ही हाथ हिलाकर हमारे बीच मुस्कुराहटों का आदान प्रदान जरूर हो जाया करता था। हम लोगों के बीच का रिश्ता कब इतना गहरा हो गया पता ही नहीं चला। आरती अब तक मुझे बता चुकी थी कि वो नौजवान यानी आकाश और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और फिर वही लोगों की कानाफूसी, माता पिता की हिदायतें और अब उनके साथ साथ आने पर पाबंदी लग चुकी थी। उस दिन तो ये सब बताते बताते आरती रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया, देखो तुम एक कामकाजी लड़की हो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा, अमूमन हर मध्यम वर्गीय घर में यही होता है, पर अगर इस समय तुमने सही फैसला नहीं लिया तो जिंदगी भर इस बात पर पछताओगी। मैंने भी सोच लिया था कि जो गलती मैंने और अजय ने की थी इन दोनों को नहीं करने दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी इन्हें एक करने की। कुछ दिनों से आरती दिखाई नहीं दी थी, मुझे चिंता हो रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर खीज भी आ रही थी। मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर तो लिया ही नहीं था और ना ही अपना नंबर उसको दिया था, कैसे पता चलेगा क्या हुआ है, कहीं बीमार तो नहीं है या कहीं बाहर चली गई है। इसी सब में आज करीब एक महीना हो चला था। अचानक एक दिन मैंने आकाश को अकेले जाते हुए देखा। इच्छा हुई कि उसे बुलाकर आरती के बारे में पूछूं, पर यह सोचकर रह गई कि पता नहीं क्या सोचेगा। इसके बाद भी कई दिन तक आरती दिखाई नहीं दी। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। एक दिन फिर मैंने आकाश को देखा। उसको देखते ही मैंने अपने किराएदार के छोटे से बेटे को, जो मेरे पास ही खेल रहा था, आकाश को दिखाकर कहा, जा बेटा उस लड़के को बुलाकर ला, कहना मेरी आंटी बुला रही है। थोड़ी देर में आकाश मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, बैठो बेटा। उसकी प्रश्नवाचक निगाहें मुझसे कई सवाल पूछ रही थीं। मैंने उसे ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए कहना शुरू किया, बेटा आकाश तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। दरअसल तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं आरती के ज़रिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत दिनों से आरती दिखाई नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। क्या वो बीमार है? पहले तुम दोनों को साथ साथ आते देखती थी, क्या बात है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? इतने सारे सवाल सुनकर और अपने नाम से किए गए संबोधन से आकाश हैरान था। आंटी आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और आरती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, बेटा आरती और मेरा जो रिश्ता है वो शायद तुम नहीं समझोगे, पर बहुत दिनों से आरती को ना देखकर मैं चिंतित हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में है और तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमसे बात करना उचित समझा। आरती यहीं से आती जाती है, करीब करीब रोज ही मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने कभी अपने फ़ोन नंबर आदान प्रदान करने की ज़रूरत नहीं समझी, इसीलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। आज तुम देखे तो लगा तुम तो सब कुछ जानते ही होगे। मेरी बातें सुनकर आकाश के चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है और मेरी बातों से उसे मेरे और आरती के संबंध का अंदाजा भी हो रहा था। धीरे से बोला, आंटी आरती से तो मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। अब मैंने संजीदगी से आकाश से कहा, बेटा जिंदगी में कई बार फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि उसका परिणाम हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है और समय पर सही फैसला ना लेने की गलती का एहसास हमें सारी जिंदगी सालता रहता है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या परेशानी है, पर अपने तजुर्बे से बस इतना जरूर कहूंगी कि अगर वाकई तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और रिश्ते में गंभीर हो तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही होगी, वरना सारी जिंदगी इस दर्द इस कसक को सहने को तैयार रहो। आकाश आश्चर्यचकित नजरों से मेरी ओर देख रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ मालूम है। बोला, आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। सच बात तो यह है कि आरती के घर वाले उसका संबंध कहीं और करना चाहते हैं, पर आरती उसका विरोध कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है वो। और मैं बस इतना कहकर आकाश चला गया। उसके जाने के अंदाज से लग रहा था कि वो निर्णय ले चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने आरती और आकाश को साथ देखा। वे दोनों मेरी ओर ही आ रहे थे। पास आकर दोनों ने मेरे पैर छुए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों एक हो चुके हैं। उनकी कृतज्ञता भरी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। शब्दों की जरूरत ही कहाँ थी। मेरी आंखें भी छलछला आई थीं। दोनों को इस तरह एक साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थीं ये कहानी, वो सांवली लड़की। कहानीकार थी नीरजा वर्मा। सखियों, बकरीद का त्यौहार हमारे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा या कुर्बानी ईद भी कहते हैं, इस्लाम धर्म का ये एक प्रमुख त्यौहार है। ये रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर के जिला हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। सखियों, बकरीद पर्व का सामाजिक संदेश भी बहुत व्यापक है, अच्छा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं का त्याग करके ही हम इंसानियत की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अमीर गरीब सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियाँ मना सकें। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कई गैर मुस्लिम दोस्त भी अपने मुस्लिम साथियों के घर सेवैयां और बिरयानी खाने जाते हैं। बकरीद सिर्फ जंतु की कुर्बानी का नाम नहीं है सखियों, असल कुर्बानी है अपने लालच, घमंड, झूठ और बुराई की कुर्बानी देना। त्याग, मोहब्बत और भाईचारे का यही पैगाम बकरीद को खास बनाता है।

सखियों, गर्मियों के तपते मौसम में हमें अपनी हरी भरी बगिया सबसे अधिक सुकून देती है। अब ये प्यारी सी बगिया आपकी बालकनी, गैलरी, छत, बरामदा कहीं भी सजी हो सकती है। आप क्रोटन्स पसंद करते हैं या रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बगिया के पौधे बस आपका दुलार चाहते हैं और बदले में अपनी ताजगी, खुशबू और प्यार बिखेरते हैं। गर्मी आते ही धूप की तेजी से पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से लू के मौसम में भी ठंडी और हरी दिख सकती है ये बगिया। सखियों, गर्मियों में पौधों को पानी देने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक का सही माना जाता है। और हाँ, पानी जड़ में ही दें, सुबह के समय पत्तों पर नहीं, क्योंकि पत्तों पर पानी धूप में लेंस का काम करता है, जिससे कि किरणें पत्तियों को झुलसा भी सकती हैं। पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके, लकड़ी का बुरादा या घास बिछा दें। पेड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगाएं। छोटे पौधों को बड़े पौधों की छांव में रखें। गर्मी में सदाबहार, गेंदा, बोगेनविलिया, कनेर, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधों को लगाना चाहिए। ये लू की गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। सखियों, पौधे भी इंसानों जैसे होते हैं, उन्हें भी गर्मी और सर्दी का एहसास होता है, इन्हें भी लू लगती है, प्यास लगती है। अगर पत्ते मुरझाते हुए, कुम्हलाते हुए दिखें, तो समझ जाएं कि इन्हें पानी का अमृत और छांव की दरकार है। पंछियों के लिए सकोरे में दाना और पानी रखना भी जरूरी है। इनका घर तो हमारी ये बगिया ही है ना। हमारी बगिया हमसे बहुत अधिक कुछ भी नहीं चाहती, थोड़ी सी देखभाल, प्यार और तेज धूप से बचाओ। घर की सबसे प्यारी जीवंत जगह आपको बार बार अपने पहलू में बुलाएगी। अब महिला सभा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपनी सखी सुनीता पाठक को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या?
6: बड़ी मध्य प्रदेश है, अब समय है एक अंतराल का।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। और
2: युवाओं के जोश उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: इस समय आप है हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है विजयलता पराशर। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। इनके गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ में ये दादरा

0: इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे विजयलता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक

0: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
6: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत दिल धड़कने दो। इस फिल्म का ये गीत है, यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों ने इसे गाया है, जावेद अख्तर ने इसे लिखा है, शंकर एहसान।

0: कुमार सानू के गाए फिल्म दिल का क्या कसूर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि परिवार और प्रियजनों का हालचाल पूछते रहें और इन मुश्किल दिनों में संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का नाथुला दौरा रद्द करना पड़ा था। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि योग और खजुराहो दोनों ही हमारी महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
1: योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्यप्रदेश सरकार घर घर योग हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंट डाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है।
0: इस बार 21 जून का मुख्य योग कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसकी थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। इसमें इसरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। शाम को नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉ मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे आरोपी पुणे के कोचिंग फैकल्टी तेजस शाह को भौतिक विज्ञान के लीक प्रश्न मिले थे। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 49 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में तो पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आज भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि 29 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून भी दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन सर्वे में पूर्व और पश्चिम वनमंडल में कुल 148 गिद्ध दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की पुलिस में कंप्यूटर संवर्ग के 89 पदों पर भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 से 9 जून तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड पर होगी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 मई से 2 जून तक जिले के 191 तीर्थयात्री श्री द्वारका सोमनाथ जी की यात्रा करेंगे और आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान जिला चिकित्सालय में 300 अतिरिक्त बेड की मांग शासन को भेजे जाने पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में

0: दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए

0: पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र शामिल किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सुनना चाहा है दिल है तुम्हारा फिल्म का टाइटल ट्रैक।

अगला अनुरोध है सलामी फिल्म के लिए। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है, समीर का लिखा, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया है। सुनना पसंद किया है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू की। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गाधीबाग अकोला से महेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। डर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बशे, संगीतकार शिवहरी।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की पसंद अपने भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। सुनना पसंद किया है सलाम नमस्ते का टाइटल ट्रैक कुणाल गानरजा वाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया है। जयदीप साहनी का लिखा है, विशाल शेखर की धुन है।

सलाम नमस्ते फिल्म का ये गीत था, कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया था। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता दें हमारा पता, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। पता एक बार फिर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिसमें 199 छात्राएं शामिल हैं। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक अन्य आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे प्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे नाटक सुनिएगा उपेक्षित, लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुत करता होंगे चित्तेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया रागेश्वरी राग आप सुनेंगे। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज का आकर्षण होगा फरमाइशी लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ, तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त इरा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज दिन है बुधवार का और बुधवार का दिन होता है हमारे खास सेगमेंट एक ही फिल्म से का,
1: जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 90s की एक बेहद ही सुंदर और खूबसूरत फिल्म। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि इस फिल्म के अलावा भी हम ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं और मस्ती भरे गीत भी सुनने वाले हैं।
0: और साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में हर बार हम आपसे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछते हैं। तो अनुभूति, फिर आज के हमारे दो प्रश्न बता दें श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
1: और दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है?
0: वैसे साथियों, आज देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है,
1: इसलिए आप सभी को ईद मुबारक। इसी तरह हंसी खुशी के साथ आप सभी ये त्यौहार मनाइए।
0: और इसी खास मौके पर आइए सुनते हैं ये गीत।
2: कांवरिया भगवान सदाशिव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब की बार हमारी खाली झोली भर दो, अगले बरस हम फिर कांवर लेकर आएंगे। ये उच्चारते हुए भाव विभोर भक्तों की भीड़ प्रभु दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है।

0: वैसे साथियों, आईपीएल 2026 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने क्वालिफायर वन मुकाबले में गुजरात टाइटंस को करारी शिकस्त देकर सीधे फिनाले में अपना प्रवेश कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अब 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले में अपनी खिताबी साख बचाने उतरेगी।
1: धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में गुजरात टाइटंस सिर्फ 162 ही रन बना पाया।
0: और साथ ही कल के मैच के स्टार रहे कप्तान रजत पाटीदार, जो आरसीबी के हैं, और इसी के साथ उन्होंने 33 बॉल्स में 93 रन्स की बहुत ही विस्फोटक पारी भी खेली और अपनी टीम को फाइनल का टिकट भी दिलाया।
1: और आज न्यू चंडीगढ़ में महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि SRH और राजस्थान रॉयल्स के बीच नॉकआउट जंग भी होने वाली है। तो इस टूर्नामेंट में या ये जो नॉकआउट मैच होने वाला है, इसमें जो भी टीम हारती है वो मैच से बाहर हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, वैसे गुजरात को एक और मौका मिलने वाला है। क्वालिफायर वन हारने के बाद गुजरात टाइटंस टूर्नामेंट से बाहर बिल्कुल नहीं हुई है। वो 29th को होने वाले क्वालिफायर टू में एक एलिमिनेटर मैच में जो टीम है उनके साथ खेलकर विजेता बन सकती है और फाइनल में पहुंच सकती है।
1: क्या बात है। और वैसे अनुभूति इस सीजन में कई रिकॉर्ड्स भी ब्रेक

0: हुए हैं अनुभवी और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल इतिहास में ब्रावो और रबाडा के बाद एक से अधिक सीजन में 25 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं और उन्होंने सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी किया है।
1: साथ ही आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने क्वालिफायर वन में 25 गेंदों पर इतनी तेज रनों की पारी खेली और इस सीजन के ऑरेंज कैप की रेस में मजबूती से अभी भी बने हुए हैं, जो वाकई उनके फैंस के लिए और हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, और अगर आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार की बात करें तो वो तो इंदौर से ही है, तो हमारे लिए तो डबल गर्व की बात हो गई ना अनुभूति।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो साथियों आइए देखते हैं कि आज का मुकाबला और क्वालिफायर टू का मुकाबला कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम अपनी जो जगह है वो अहमदाबाद तक बनाती है फाइनल्स तक।

0: वैसे साथियों, अब बारी है हमारे उस स्पेशल सेगमेंट की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है हर बुधवार एक ही फिल्म से, जहां हम हर हफ्ते किसी एक कल्ट क्लासिक सिनेमा की परतों को खोलते हैं और उसकी यादों को तरोताजा करते हैं।
1: और आज की हमारी फिल्म कोई आम फिल्म नहीं है अनुभूति। आज हम सीधे रुख कर रहे हैं साल 1996 का, जब सिनेमाघरों के बाहर मील लंबी लाइनें लगी थी एक ऐसी फिल्म जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी की।
0: अरे वाह, राजा हिंदुस्तानी, नाम लेते ही वो परदेसी लड़की, वो छोटा सा पहाड़ी शहर और आमिर खान की वो मटमैली सी टैक्सी आंखों के सामने आ जाती है ना हीरा?
1: बिल्कुल।
0: आज से ठीक 30 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर झंडे नहीं गाड़े थे, बल्कि लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जो आज भी उतनी ही ताजा है।
1: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा अनुभूति। और सिर्फ 5.75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तब दुनिया भर में लगभग 76 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था, जो उस जमाने का एक अकल्पनीय रिकॉर्ड था। इसकी कहानी जितनी सिंपल थी, इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन उतना ही तगड़ा। एक सीधे साधे उसूलों वाले टैक्सी ड्राइवर राजा और एक अमीर घराने की लड़की आरती सहगल की ये प्रेम कहानी, जिसने क्लास डिवाइड यानी कि अमीर और गरीब का जो गैप था उसको बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया गया है।
0: और उस फिल्म का जो सिनेमा था वो 90 के दशक का उस दौर को इतनी खूबसूरती से दिखाता है, जब दर्शक स्क्रीन पर सादगी, मर्यादा और साथ ही भरपूर पारिवारिक ड्रामा देखना पसंद करते थे। इस फिल्म की शुरुआत जितनी खूबसूरत वादियों में होती है, इसका अंत उतना ही जज्बाती और ड्रामेटिक भी होता है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं इस फिल्म के उस एवरग्रीन गाने के साथ जो आज भी हर आशिक की जुबान पर रहता है, और वो गाना जो शादियों में शान बन चुका है और जिसने अलका याग्निक की आवाज को हर दिल तक पहुंचाया है।

0: साथियों, आज एक ही फिल्म से सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं, फिल्म राजा हिंदुस्तानी की। वैसे अनुभूति, इस फिल्म में जो एक्टिंग और कैरेक्टर्स का तालमेल था, उसने वाकई में इस फिल्म को अमन बना दिया है ना?
1: बिल्कुल। और जब बात किरदारों की हो तो आमिर खान के मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कहानी इसी फिल्म से और मजबूत होती गई है।
0: बिल्कुल, वो गाना तेरे इश्क में नाचेंगे।
1: बिल्कुल, और उस गाने से ठीक पहले अगर आपको याद हो वो सीन जहां राजा आरती के घर के सामने हंगामा करता है, आमिर खान ने उस सीन में असली दर्द और वो लड़खड़ाहट लाने के लिए कितना अच्छे तरीके से अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। और यही तो खासियत है ईरा ऐसे एक्टर्स की, जिन्हें बेस्ट एक्टर उस फिल्म के लिए मिला और उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए था।
0: बिल्कुल अनुभूति, और सिर्फ आमिर खान ही क्यों, करिश्मा कपूर के करियर का टर्निंग पॉइंट भी तो थी ये फिल्म। इससे पहले करिश्मा को लोग सिर्फ चुलबुले और डांसिंग रोल्स के लिए जानते थे, लेकिन आरती के रूप में उनकी सादगी, वो स्ट्रेट बाल, लखनवी और सिंपल सूट्स का उनका लुक और उनकी संजीदा एक्टिंग ने उन्हें रातों रात बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस बना दिया। और उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट अवार्ड भी मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था
1: और साथ ही फिल्म फेयर भी मिला। तो साथ ही इस फिल्म में अगर हम ये भी बात करें हीरा, कि जिस तरीके से तुम एक्टर्स के बारे में बता रही हो, इस फिल्म का डायरेक्शन भी उतना ही कमाल का है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं धर्मेश दर्शन, उनकी दाद देनी होगी। उन्होंने जब जब फूल खिले जैसी फिल्म से इंस्पिरेशन ली थी और 90 के दशक के हिसाब से उस फिल्म को ऐसा ढाला कि हर कोई इस फिल्म से एक अलग ही जुड़ाव महसूस करता है। फिल्म में विलन्स के तौर पर अर्चना पूरन सिंह की सौतेली माँ का किरदार हो, या फिर जॉनी लिवर जैसे एक्टर की एक्टिंग हो, या फिर धर्मेश दर्शन ने अपने एक्टर्स को जिस तरह हर रोल में ढाला हो, हर तरह के रोल में हर एक फ्रेम को तराशा था। और इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर और बखूबी रूप से डायरेक्शन का सही इस्तेमाल उन्होंने इस फिल्म में किया था।
0: बिल्कुल, यही तो सिनेमा का जादू है अनुभूति, और इस जादू को सात आसमान पर पहुंचाया है इसके म्यूजिक ने, नदीम श्रवण की जोड़ी और समीर के लिखे बोल, जिसने इस फिल्म को उस दशक का तीसरा सबसे बड़ा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बना दिया था।

0: साथियों, हम बात कर रहे हैं साल 1996 की उस टाइमलेस लव स्टोरी राजा हिंदुस्तानी की। वैसे अनुभूति, गाना सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि आज 30 साल बाद भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो आखिर हम सभी को क्या हो जाता है, हम लोग सब कुछ हमारा काम छोड़कर इस फिल्म को देखने क्यों बैठ जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में?
1: इरा, इसका जवाब है इमोशंस की प्योरिटी, यानी कि भावों की पवित्रता। आज के सिनेमा में भले ही बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन जो लार्जर देन लाइफ और मासूमियत 90 के दशक की सिनेमा की थी वो कमाल की थी। राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्म सिर्फ एक लड़का लड़की की कहानी नहीं है, ये बात करती है आत्मसम्मान की, वादों की और परिवार के बिखराव और जुड़ाव की।
0: बिल्कुल, और इसी से मुझे वो डायलॉग याद आता है जब राजा कहता है ना, गरीब हूँ पर बिकाऊ नहीं, तो वो लाइन सीधे दिल में उतरती है। वो दौर ऐसा था जहाँ प्यार में सब कुछ न्यौछावर करने की शिद्दत होती थी। जब आज का युद्ध भले ही कितना भी प्रैक्टिकल हो जाए, लेकिन जब दिल में किसी कोने में वो पुरानी वाली मोहब्बत महसूस करनी होती है ना, तो ऐसी फिल्में ही याद आती है।
1: बिल्कुल, और इस फिल्म का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम बंजारों के उस गाने की बात ना करें जिसमें प्रतिभा सिन्हा और कल्पनाथ अय्यर ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी। परदेसी परदेसी जिस गीत के बोल हैं, ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं, उस दौर का एक इमोशनल एंथम बन गया था। आपको जानकर मजा आएगा कि इस गाने को हॉलीवुड तक में भी बहुत पसंद किया गया था।

0: तो श्रोताओं, आज एक ही फिल्म से सेगमेंट में हमने जिया राजा हिंदुस्तानी के उस दौर को, जहां प्यार निश्चल था और सिनेमा सीधा दिल से बात करता था। उम्मीद है आपको हमारे साथ इस पुरानी डायरी के पन्ने पलटने में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें।
1: और साथियों, अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है या इस फिल्म से जुड़ी आपकी कुछ सुनहरी और खूबसूरत यादें हैं तो हमें जरूर बताइएगा, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
0: लेकिन अनुभूति, जाते जाते हमारे श्रोताओं को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता दें।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न था, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसका उत्तर है राजस्थान।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, जिसका उत्तर है नर्मदा। हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर आपने सही खोजे होंगे।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ सुनते रहिए युववाणी कार्यक्रम को, और अगर आप सभी के पास युववाणी कार्यक्रम से संबंधित कोई भी मैसेज है या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल और पत्र के माध्यम से बता सकते हैं।
1: इसी के साथ दीजिए इजाजत अनुभूति
0: और इरा को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत बिल्लू फिल्म से, आवाज सोहम, आकृति कक्कर और मोनाली की, गुलजार के शब्द और प्रीतम का संगीत।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौड़ का गाया और सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का गाया वीर ज़ारा फिल्म का गीत। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और मदन मोहन का संगीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सबंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
6: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
5: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
6: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
5: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
6: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
5: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
6: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और

0: रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
7: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
6: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
7: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
6: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक। हमें इन पर नाज है।

0: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
1: क्या बात है,
0: सुनकर ही जोश आ गया।
1: हाँ
0: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
1: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर

0: अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक

0: मिशन टू। दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
3: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
4: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
3: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
4: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
2: संभल कर।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो। दुर्गा माता की जय। माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू बीवी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
4: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत। पहले सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है हृदय रोग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं और उनका उपचार। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सुयश तापेड़ कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल, समय सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फोन करना न भूलें। गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल, समय सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के स्वर में उनकी गाई चंद गजलें। पहले प्रस्तुत है ये कलाम।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के स्वर में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए पेश है ये अगला कलाम।

श्रोताओं, भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है हृदय रोग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सुयश तापेड़ कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 28 मई 2026, समय सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फोन करना न भूलें। गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल समय सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, लोक संगीत में सुनिए सरिता मेघार्ग के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुत है ये पहली लोक रचना।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, लोक संगीत में आप सुन रहे हैं सरिता मेखारक के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुत है ये अगली लोक रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सरिता मेघार्ग के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक

0: शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। कार्यक्रम में आप सुनेगा गर्मियों में पशुओं को कैसे बचाएं, इस विषय पर डॉक्टर विक्रम सिंह कुशवाहा की स्वास्थ्य से चर्चा और साथ ही सुनिएगा लोक संगीत। कार्यक्रम सुर्खियों में रात 8 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:15 पर पेश होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत होंगे रात 9:15 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे सुनेगा रूपक, इंदौर का पूरा वैभव और स्थापत्य। प्रस्तुति रविन्द्र राले की होगी। शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं रात्रि 10:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे का ख्याल गायन, राग होगा बिहाग। श्रोताओं ये थे आज के कार्यक्रम। अब कल के कार्यक्रम भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 पर। चिंतन होगा कल सुबह 6:30 पर। विषय होगा दिशाहीनता, आलेख किंचुक चौहान का और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का। खेती की बातें में सुबह 6:35 पर गर्मी में पशुओं का बचाव कैसे करें, इस विषय की जानकारी दी जाएगी। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे सवेरे 6:40 पर। श्रोताओं संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा प्रसारित होगा कल सुबह 7:20 पर। कार्यक्रम में सुनेगा वार्ता वर्तमाने संस्कृतस्य उपयोगिता एवं वैज्ञानिकता। वार्ताकार होंगे हर्ष शर्मा। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल हम लेकर आएंगे कल सुबह 7:35 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग कल सुबह 8:30 पर हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। लोक संगीत में सुबह 9 बजे आप सुनेंगे लक्ष्मण प्रसाद रसिक के गाए लोकगीत और कल सुबह 9:15 पर विभिन्न कलाकारों के स्वर में होगा सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत में कल सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विदुषी जयश्री पाटनेकर का गाया राग तोड़ी। जिले की चिट्ठी कल सुबह 10 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। और श्रोताओं फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर। तो श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
6: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस तुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ

0: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सीबीएसई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सीबीएसई की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
2: आज खजुराहो और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं बल्कि योग अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के 2 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किये। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रूपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41,00,000 रूपये के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जांच करने और होने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में

जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में आईएचएसएफ डीपी योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और आईपीएल में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली बहन हो न सातेज अपना सगला भाई हो उनके भारती की राम राम। बहन हो लाडली लक्ष्मी योजना की बात करा तो यह नानी होन सरू बनाई गई एक योजना है जिमें नानी होन के जन्म से लीने भरनों लिखनों उनके ब्याह शादी तक आर्थिक सुरक्षा दी जावे है। इमें अपनी नानी होन के कम से कम 1,43,000 रुपया तक की आर्थिक सहायता मिले है जो कि अलग अलग रूप में बैंक का खाता में जमा होती जावे है। जैसे कि जद वे क्लास अलग अलग क्लास उनमें जावे है अलग अलग कक्षा उनमें जावे है तो उनके यो लाभ छात्रवृत्ति का रूप में मिलते जावे है। एका लाभ की बात करा तो जन्म का बाद का पहला 5 बरस तक हर साल 6,000 रुपया राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सरकार द्वारा खरीदियो जावे है। ओका बाद जब नानी छठी कक्षा में जावे तो उन्हीं बखत 2,000 रुपया उसके मिले। जब वह नौवीं कक्षा में जावे तब 4,000 रुपया ने नौवीं कक्षा पास करीने जब वह आगे बढ़े और 11वीं कक्षा में जावे तो 6,000 रुपया ओके छात्रवृत्ति का रूप में मिले हैं ने जब 12वीं कक्षा में जावे तब भी ओके 6,000 रुपया की छात्रवृत्ति दी जावे हैं। आखिरी वालों भुगतान 21 बरस की उम्र पूरी होने ने 12वीं कक्षा में भरने पे 1,00,000 रुपया अंतिम राशि का रूप में दियो जावे है। इमें जो मतलब अपना के चाहिए रहे कि इस नानी के ही को लाभ मिलेगो तो नानी को जन्म 1 जनवरी 2006 या उका बाद हुआ हो तो वो इन्हें लाडली लक्ष्मी योजना को लाभ ली सके हैं। जो भी आवेदन करे वे मध्य प्रदेश का मूल निवासी होवे हैं। साथेज माए बाप आयकर दाता नहीं होनो चाहिए और इमें जो दस्तावेज लागे नहीं वे है अपना माए बाप का आधार कार्ड मूल निवासी को प्रमाण पत्र नानी को जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज को फोटो ने खाता पासबुक समग्र आईडी यह सब होनी चाहिए साथ में। आवेदन करने सारू पास का आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत लोकसभा केंद्र से अपन संपर्क करी सका हाँ। ने बेणून देखो अभी नौ तपो की बखत चली रही है केवे है जब सूरज रोहिणी नक्षत्र में जावे तो अगला नौ दिन

તપા કહેલાવે હે. યા વખતમાંય ઘણી ગરમી પડે યો માન્યો જાવે હે કી એના નો તપાખે અચ્છો તપનો જઈએ. યો અચ્છો તપેગો તો વરસાદ બી ઘણી અચ્છી હોવેગી. એના નો તપામાંય ઘામ જો હોવે ની વો ખેતમાંય અંદર તક जावे है. तो जिका से कहीं होवे है कि जो कीड़ा मकोड़ा अंदर अपना मट्टी में रहवे नहीं वे नष्ट हो जावे है. मट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी जावे है. इना नो तपा माए भीषण गर्मी ने लू से बचने सारू घाम माए निकलने से बचा. ठंडी तासीर वाली चीज को उपयोग करा. थोड़ी थोड़ी देर माए पानी पीता रहवा भले ज अपना के तीस नहीं लागे. शरीर के ठंडक मिले एका सारू नींबू पानी पीवा. छाछ सत्तू को उपयोग अपन करी सका हाँ. नारियल पानी केरी को पणो इमें घणो फायदो करे है. साथ ज बेल को शरबत भी बनाईने मनखुन राखे है और उखे भी अपन पीता रही सका हाँ. और खास करीने सुबह 10 से 4 बजे तक बाहर नहीं निकला. और अगर बहुत जरूरी होवे बाहर जानो ही होवे है तो हल्का रंग का सूती ढीला ढाला कपड़ा पहना. माथा के गमछा या टोपी से ढाका. खीसा माए कांदो रखा ने खाना माए भी कांदो ककड़ी तरबूज खरबूज को उपयोग करा. और अगर कभी लू का लक्षण दिख रहा है चक्कर आ रहा है तेज बुखार घनी थकान लागे तो जल्दी से डॉक्टर के दिखावा. ने देखो ने आज बुधवार को दन है और बुधवार को दन होवे ने अपना पहला पूज्य गणेश गजानन के नहीं मनावा असो तो ही नहीं सके. तो गजानन के मनावा ने सुना कामना बिल्लोरे को गायो यो लोकगीत.

0: बेनों अभी अपन ने बैंड कामना बिल्लो रे को गायो यो लोग भी सुनियो ने बात करा तरबूज की तो बेनों इना उनाला की बखत माए यो एक घनो रसीलो ने ताजो फल है। इका माए घनो पानी होवे है जो शरीर माए पानी की पूर्ति करे है। इना गर्मी माए तरबूज खानो घनो फायदामंद होवे है। इना तीखा घाम ने चिलचिलाती गर्मी माए कदी कोई फल सबसे ज़्यादा राहत देवे तो वो है तरबूज। ठंडो मीठो ने लाल लाल तरबूज खाना माए तो घणोज आनंद आवे है। तरबूज स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत सारू भी घणोज फायदामंद होवे है। यो शरीर खे ठंडक भी देवे है ने साथे साथ पानी की पूर्ति भी करे है। इना तीखा घाम माए ने गरम गरम लू का थपेड़ा माए अपनो शरीर माए से पसीना का रूप माए पानी निकली जावे है। एका सारू अपना खे तरबूज खानो चाहिए जिका से शरीर माए पानी की कमी नहीं होवे ने नरा विटामिन भी मिलता रहे। वजन कम करने माए भी यो अपना साथ दी देवे है। इमें पानी घनो होवे है। एका सारू इके खाने से पेट जल्दी भरे जावे ने भूख भी जल्दी नहीं लागे। असो लागे कि पेट भरियो भरियो है। इमें जो फाइबर होवे नी वे पाचन क्रिया के ठीक राखे पेट की चर्बी घटाने में भी यो मदद करे है। आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में स्वास्थ्य को ध्यान रखनो घणो जरूरी होवे है। तरबूज खाना से हृदय ने शक्कर तो ही संतुलित रहे है। इस इका सारू इको उपयोग अपन करी सका हाँ। कदी पाचन क्रिया कमजोर है जब देखो तब गैस अपचन पेट में भारीपन की परेशानी होवे असा माय रोज दन तरबूज खानो राहत को काम करे है। तो भाई बहन हो ना ठंड गर्मी का मौसम में अगर अपन ने तरबूज को उपयोग करियो तो अपना के घणो फायदो एका से मिली सके है। ने देखो नी बहनों इना लू लपट में अपन अपनो तो ध्यान रखा पर अपना साथे साथ अपना के अपनो जो अबोलो जानवर है अपना पशुधन है उनको भी खास ध्यान रखनो पड़े है। पण कसे इन्हीं गर्मी से अपन अपना ढो ढंग करके कसे बचावा एका बारा में जानकारी दिया है डॉक्टर विक्रम सिंह कुशवाहा। तो सुना या वार्ता।
1: आकाशवाणी इंदौर के श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम विक्रम सिंह कुशवाहा। मैं नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय से बीबीएससी एमबीएससी पीएचडी किया हुआ है। आज हमारे श्रोताओं के लिए किसान भाइयों के लिए विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि गर्मियों के समय में हम अपने जानवर को कैसे बचाएं, जिसको हम इंग्लिश में हीट स्ट्रोक बोलते हैं। सामान्यतः पशुपालन और पशुपालक सब चीज़ों से वाकिफ तो होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब अचानक तापमान वातावरण का बढ़ता है तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम इस विषय में तीन तरह के पशुओं को हम लेते हैं। दुधारू पशु जो कि दूध देते हैं, गर्भधारण पशु जो कि गर्भधारण किए हुए हैं, और एक होते हैं सूखा पशु जो कि ना तो दूध दे रहा है और ना ही वो गर्भधारण की है, वो आने वाले समय में तैयार होगा गर्भधारण के लिए। तो इस तीन तरह के बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे आता है दुधारू पशु। दुधारू पशु हो या फिर गर्भधारण पशु हो या सूखा पशु हो, तीनों पशुओं में का इनका सामान्य तापमान शरीर का तापमान 97 से 98 के बीच में होता है। तो जब दुधारू पशु का हम गर्मियों के समय में मैनेजमेंट करेंगे तो सबसे पहले उनको संतुलित आहार देंगे। संतुलित आहार में आता है कि हरा चारा देंगे, हरा चारा के साथ साथ अभी सूखा चारा भी देंगे, लेकिन सूखा चारे में हम पर्याप्त मात्रा में खली देंगे और उसमें पानी की मात्रा अच्छी रहेगी। उससे क्या होगा, जब जानवर ये सब चीज़ें खाता है तो उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। जब पानी की कमी नहीं होगी तो उसका शरीर ठंडा रहेगा और जब ठंडा रहेगा तो उसको गर्मी नहीं लगेगी। अब क्या होता है, प्रातःकाल दिनचर्या शुरू होती है तो उस समय टेम्परेचर कम होता है, 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले पशु को हम दूध निकालते हैं, वहाँ का उसकी जगह को साफ करते हैं। जब सफाई करने के बाद जब उसको खाना देते हैं जिसमें हरा चारा आ गया, भूसा आ गया, कंसंट्रेट मिक्सचर आ गया, सारा हम सब देने के बाद उसको हम उसके जो रहने की जगह सबको साफ करते हैं। अब क्या होता है, जब जानवर का रेस्टिंग पीरियड आता है मतलब उसको आराम करने का समय आता है तो हम उसको ठंडी जगह पर रखते हैं। ठंडी जगह से मतलब होता है या तो पेड़ की छाए हो वहाँ हम उसको रखेंगे, है ना, जहाँ खुला हवा आएगी, या तो होता है एक कच्चा शेड बनाते हैं जिसमें पुराने पेड़ पत्तों की डालियाँ होती हैं, कच्चा शेड बनाते हैं, उसको खुला होता है, उसमें भी हवा आती है, वो ठंडा रहता है। और इसकी हाइट हम पर्याप्त रखते हैं, कम से कम 15-16 फुट हाइट होना चाहिए ताकि हवा का प्रभाव पूरा निकल सके, उससे गर्म हवाएं इकट्ठी ना हो। अब तीसरा आता है पक्का घर। पक्का घर में क्या होता है, छत होती है या फिर दीवारें पक्की होती हैं, तो उन दीवारों को बीच में 5 फुट की दीवार के बाद 3-3.5-4 फुट का जाली होना चाहिए ताकि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो। कूलर पंखे लगाओ, स्प्रिंकलर लगाओ, और पर्याप्त जगह के साथ साथ हम जब भी हम जानवरों को रखते हैं तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। एक ही जगह पर कम से कम 5 फुट बाई एक जानवर के लिए 5 फुट की जगह तो चाहिए उसको खड़े होने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए। तो कम जगह में ज़्यादा जानवर ना बांधें, और ज़्यादा जानवर बांधेंगे तो उनसे निकलेगी हीट, तो और भी हीट पैदा होगी, है ना। तो इनका ये सुबह से शाम तक का ये मैनेजमेंट होता है। अब आता है शाम के समय, एक वक्त आता है तो जब हम उनको, गाय बकरियाँ होती हैं तो उनको तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो अपना शरीर के पे सफ़ेद रंग के और चितकबरे बाल होते हैं, तो इतना उनको गर्मियाँ नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है भैंस में। भैंस क्या करती है, एक तो बहुत उसका रंग काला होता है तो हीट को खींचती है, तो भैंस के साथ दिक्कत जाती है सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक की। तो उसको क्या करते हैं हम, समय समय पर उसको शाम के टाइम, जैसे दिन ढलता है 3-4-5 बजे का समय आता है और मिल्किंग करते हैं, तो उसको ठंडे पानी से नहला सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, और जरूरत पड़े तो आसपास कहीं पौंड हो तो पौंड में वो नहाती है तो अपने आपको हीट से बचाती है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि दुधारू पशु को हीट स्ट्रोक से बचाना भी है और उसका जो दूध का उत्पाद है वो भी इफेक्टेड ना हो। दूध का उत्पाद कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा होता है और कई बार कम हो जाता है। कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जानवर कहीं ना किसी भी समस्या से गुजर रहा है, या तो उसकी प्रॉपर डीवर्मिंग नहीं कराई गई है, या तो कई बार क्या होता है कि खाना तो खा रहा है पर पानी कम पी रहा है और खाना खा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वातावरण की जो हवाएँ हैं, गर्म हवाएँ से स्ट्रेस आ रहा है। तो हम उन जगह ऐसे जानवरों को ठंडी जगह रखने के साथ साथ उन जानवरों को हम कोशिश करेंगे कि धूप से बचाएं। धूप से बचेगा तो स्टॉक कम होगा, और समय समय पर अच्छा पानी पिलाएं, ताज़ा पानी पिलाएं, और इस प्रकार से उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब आता है गर्भधारण पशु। जो गर्भधारित पशु होते हैं जिनके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो उन पशुओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखो, गर्मियों में दुधारू जानवर और गर्भधारित जानवर का दोनों का जो डाइट है अलग अलग होती है, उनका खान पान अलग होता है। जो दूध देने वाला जानवर होता है तो उसको तो ऐसी समस्या नहीं आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गर्भधारित पशुओं की। गर्भधारित पशुओं को कुछ बिंदुओं पर हमको चर्चा करना चाहिए। ऐसे पशु जो कि गर्भधारण किए हुए हैं उनको चिकनी सतह पर नहीं रखना है, फर्श हमेशा खुरदरा होना चाहिए।

0: ताकि वो जब वो चले तो वो उनका पैर फिसले नहीं। कई बार क्या होता है, चिकने फर्श पर रखने से जानवर का पैर फिसलता है और वो उसको उसको खुद को चोट होती लगती है और हो सकता है कि अंदर बच्चे को भी चोट लगे, तो उससे बचाव करना है। दूसरा होता है कि गर्भधारित पशुओं को हम चरने के लिए भेजते, चरने के लिए इसलिए नहीं भेजते क्योंकि चरने चरने जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं शरीर का जो वजन है ज़्यादा है, कहीं गिर सकता है, फंस सकता है, तो आसपास ही उसको रखना होता है। तीसरा होता है कि गर्भधारण पशुओं को एक अलग ही जगह दी जाती है जहाँ और पशु नहीं होते हैं, वहाँ उसको अकेला रखा जाता है, खुली एरिया में रखा जाता है, आसपास सफाई रखी जाती है और ध्यान रखा जाता है कि जहाँ वो गर्भधारित पशु हो या दुधारू पशु हो कि आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना हो। गंदा पानी इकट्ठे से होने से क्या होता है, उसमें मच्छर मक्खियाँ बनपते हैं जो कि बाद में आके रात में उन मच्छर मक्खी उनको जानवर को परेशान करते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पर मिट्टी का तेल का छिड़काव करें, और जब इस छिड़काव करने के साथ साथ रात में ऐसा लगता है कि मच्छर मक्खी परेशान कर रहे हैं तो पुराना चारा जो कि सूखा चारा होता है उसमें कंडे की सहायता से हम उसमें धुआं करेंगे, धुएं से मच्छर मक्खी भाग जाते हैं। अब आता है सूखा जानवर। सूखा जानवर ऐसा जानवर होता है जो कि दूध दे चुका होता है और दूध देने के बाद तैयार हो रहा होता है कि अगली साइकिल आएगी और वो अगली संतान पैदा करेगा, तो 2 से 3 महीने के समय वो उसको किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि दूध दे रहा होता तो दूध देना भी बंद रोक दिया जाता है ताकि वो अपने शरीर का पूरा पोषण मिल सके उसे। तो दुधारू पशु, गर्भधारण पशु और सूखा पशु, तीनों का रख रखाव में बहुत अंतर है, बल्कि इसका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो गर्भधारण पशु होता है उसको अलग से थोड़ा मल्टी विटामिन, कैल्शियम और ज़रूरत की दवाइयाँ जो कि आने वाले जो गर्भधारण में जो बच्चा पल रहा है उसके विकास के लिए। समय समय पे हम क्या करते हैं, तीनों चार तरह के पशुओं को इनका टेम्परेचर चेक करते हैं ताकि पता चले कि हीट स्ट्रोक तो नहीं है। अच्छा, और आने वाले समय में जैसे भी समय मिलता है तो पशु चिकित्सक से सलाह लो, उनसे पूछो कि प्रॉपर डीवर्मिंग कराओ और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराओ, और इन समस्याओं से के साथ साथ कोशिश ये करो कि जानवर को ओवर क्राउडिंग से बचाओ और खुले में ना बांधो। और जब भी ऐसा लगता है कि जानवर किसी कारण से दूध देना कम कर रहा है या फिर जैसा जानवर जो जो कि गर्भधारण की है या और वो खाना कम खा रहा है तो मुंह से सांस ले रहा है और बेचैन हो रहा है, तो ऐसे उस समय हम नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लो और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ। अब इन तीनों चारों चारों तीनों तरह तरह की कैटेगरी के पशुओं को हम इन इस समय समर से में गर्मियों के समय में हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। नमस्कार।
1: अभी अपन ने इना गर्मी का मौसम आए अपना पशु उन अपना जो पशुधन है उनके इना गर्मी से कैसे बचावा एका बारा में जानकारी सुनी। जानकारी दिया था डॉक्टर विक्रम सिंह कुशवाहा ने भाइयों सहयोगितागंज मंडी से। मंडी का भाव आ गया है तो अपना भाई बहन उनके बताई देवा। डालर चना जी की आवक रही 2674 क्विंटल, भाव रहो 6230 से 9430 ने, मॉडल भाव रहो 7800 रुपया। गऊ जी की आवकरी 3026 एक भाव रहो 2200 से 3285 ने, मॉडल भाव रहो 2429 रुपया। सरसों जी की आवकरी 5 क्विंटल, भाव रहो 5500 से 6820 और मॉडल भाव रहो 6800। चना जी की आवकरी 163 क्विंटल, भाव रहो 5155 से 6895 और मॉडल भाव रहे 5500। सोयाबीन जी की आवकरी 558 क्विंटल, भाव रहे 4000 से 7290, मॉडल भाव रहे 6900 रुपया। मिर्ची जी की आवकरी 125 क्विंटल, भाव रहे 5910 से 15520 और मॉडल भाव रहे 11800। उड़द की दाल जी की आवकरी 60 क्विंटल, भाव रहे 7230 का, दोई भाव 7230 ही रहा। तिल्ली जी की आवक रही 2 क्विंटल, भाव रहे 7,790 से।

0: 8,045 और मॉडल भाव भी यो ही रहो। मेथी दाना जी की आवकरी एक क्विंटल भाव रहो 5,155, अधिकतम और मॉडल भाव भी यो ही रहो। बटला जी की आवकरी दो क्विंटल भाव रहो 1,600 से 3,090 और मॉडल भाव रहो 3,000। मूंग जी की आवकरी 242 क्विंटल भाव रहो 4,444 से 7,400 और मॉडल भाव भी यो ही रहो। मक्का जी की आवकरी 17 क्विंटल भाव रहो 1,600 से 1,850 ने मॉडल भाव रहो 1,680। राजमा जी की आवकरी एक क्विंटल भाव रहो 8,005 का दोनों भाव भी यही रहा। इमली जी की आवकरी 32 क्विंटल भाव रहो 3,600 से 11,000 और मॉडल भाव भी यही रहो। धनिया जी की आवकरी एक क्विंटल भाव रहो 6,280 मॉडल और अधिकतम भाव भी यही रहो। तुंवर जी की आवकरी 129 क्विंटल भाव रहो 5,700 से 5,850 ने मॉडल भाव भी 5,790 रहो। वैसे लक्ष्मीबाई नगर से भी मंडी का भाव आया है जिसमें सोयाबीन जी की आवकरी 1,310 क्विंटल भाव रहो 4,825 से 8,000 ने मॉडल भाव रहो 7,165। गऊ जी की आवकरी 2,890 क्विंटल भाव रहो 2,100 से 2,676 और मॉडल भाव रहो 2,371। चना जी की आवकरी 27 क्विंटल भाव रहो 4,755 से 5,290 ने मॉडल भाव रहो 4,895। आप सुनी लेवा बच्चों की जो गर्मी की छुट्टियां लागे नी उको उपयोग कसे करा एक बारा में जानकारी दे रही है अध्यापिका मीनल जोशी ने इनका से बातचीत करी रही है सुनीता। तो सुना या भेंट वार्ता।
1: किसान भाई ने होनी अपन अपनो खेती को काम काज तो करा जैसे साथ में बाड़क न को भी ध्यान धरनो पड़े आना उंधाड़ा का टेम जहाँ की बाड़क अपना विद्यालय नहीं जाता है तो उनका नक छुट्टी न मन संभालनु एक अपना आप में समस्या हो जाए। समस्या छे तो समाधान छे ओके कसो निपटारो करा बाड़क न का संभाला एकालेन अपनी चौपाल पर छे अपनी साथ में बहन मीनल जोशी इनका से अपन जानांगा कि अपन बाड़क न का व्यस्त कसा करी सकाय पर चौपाल पर करा उनको स्वागत न का राम राम मीनल
2: भाई। राम राम।
1: उंधाड़ा में पानी की समस्या मेहमान न की अवई आने बाड़क न का संभालो यू एक हुई जाए कि हम कसो संभाला बाड़क न का कि दोपहर में बाहर भी नहीं जाए न अच्छा से अच्छा अपने यहाँ मजे का रह सके।
2: देखिए सुनीता बहन ये शायद हमारी सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं की गृहणियों की कि साल भर तो बच्चा 10 महीने तो बच्चा स्कूल में अपने आप को लगाए रखता है गतिविधियों में अलग अलग लगा रहता है पर ये 2 महीने की जो हमारी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती उसमें सबसे ज्यादा अगर बच्चों को हमको देखना है तो इसी चीज के लिए देखना है कि वो घर के बाहर भी नहीं जाए और घर में किसी तरह से हम उसको मैनेज कर सके बच्चे को कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का हमारा उपयोग भी हो जाए और बच्चा कुछ न कुछ गतिविधियों के अंतर्गत कुछ सीख भी ले है ना। अब यहाँ पे हमें शिक्षण कार्य भी नहीं करवाना है उन्हें क्योंकि वो साल भर स्कूल में कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये जरूर देखना है कि बच्चों को हम इन छुट्टियों के अंतर्गत कुछ न कुछ इस तरह से शिक्षा दे पाए कि वो अपने आप को संगठित करें आने वाले भविष्य के लिए भी तैयार करें और हमारा ये फर्ज भी बनता है और हमारा कर्तव्य भी हो जाता है कि हम उनको इस चीज के लिए कहीं ना कहीं अग्रणी तैयार भी
1: बिल्कुल है ना। तो ऐसा कहाँ का घर में गतिविधि न हो सकत एक ही जानकारी देते।
2: हाँ सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि ये 2 महीने की जो छुट्टियां आती है इसमें हमें बच्चों को सबसे पहले हमें यही तैयार करना है कि वो कैसे अपने इसको आगे वाले आने वाले ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद कैसे तैयार रखेंगे। अब उन बच्चों को हम छोटे छोटे कार्य करवा के अपने घर में जैसे कि हम दूसरे कामों को छोड़ के छोटे छोटे कामों पे ज्यादा ध्यान देंगे कि जैसे घर में अगर बर्तन रखे हुए हैं तो हम उन्हें जमाने के लिए कहेंगे जिससे वो उन बर्तनों को पकड़ने की क्षमता उनमें आएगी क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे हैं अभी है ना। तो जैसे चम्मचों को एक जगह व्यवस्थित जमाना कटोरियों का एक अलग स्थान है गिलास रखने का एक अलग स्थान है तो वहां पर ये इन चीजों को अगर संगठित करना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को भी ये संगठित करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से वो हमने एक संगठन की शिक्षा दे रहे हैं कि कहाँ अपने भविष्य को संगठित करें। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं तो कपड़ों की तह करके उन्हें सही जगह पर रखना या अपने चीजों को संभाल कर व्यवस्थित जगह पर रखना जिससे वो अपने कहीं भी कोई भी चीज को अगर हम नहीं है हमारी अनुपस्थिति में भी वो उन चीजों को मिल पाए वो उनको चीजें। तो इस तरह से हमको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सिखा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कि किना तरीका से अपनो जीवन को प्रबंधन करा और अपना घर का भी व्यवस्थित रखा, मेहमान की भी आवाई रही, उनका नसीब भी बात करने को तरीको सीखेगा, उनके साथ सामंजस्य बैठाएगा। तो सामूहिक रूप से कसा हम रह सका अपना रिश्तेदार के साथ, समाज के साथ कसो सामंजस्य बैठाड़ा, ओके भी जानकारी।
2: सुनीता बेन, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। आजकल के परिवेश में हम ये देख रहे हैं कि खासकर शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी ये हो रहा है कि बच्चे आजकल टीवी मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और रिश्ते अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे कई रिश्तों की कमी होती जा रही है, तो इसमें हम बच्चों को जैसे आए गए का कोई स्वागत है ये करना, जैसे कोई भी आता है तो उन्हें हम पानी का ग्लास लेके पहुंचाएं, तो वो बच्चे एक आवभगत के साथ साथ अपने संस्कार भी सीखते हैं,
1: सेवा भी सीखते। बिल्कुल सही कहो। और एक यहाँ बात हम जोड़ना चाहूंगा कि कहीं न कहीं बच्चा संयुक्त परिवार से भी टूटता चला जा रहा है।
2: बिल्कुल सही।
1: दादा दादी नाना नानी इनको महत्व भी सिखा रहा, और एकल परिवार होने की वजह से कहीं कहीं एक बच्चों एक परिवार हो गए। तो वो भाई बहन को महत्व नहीं समझ पाई रहो, या वो समझना चाहे रो पर समय अभाव का कारण नहीं मिल पाता है।
2: बराबर बात कही।
1: तो अपना दादा मामा को घर को बड़ो महत्व है, तो दादा दादी मामा मामी इना रिश्ता न कभी समझना लगा। और ऐसा कौन सा काम न से और जोड़ी सका कई जैसो कई खिलौना बनाने को या पुराना कपड़ा बनाने को कई इना तरीका से भी जोड़ी सके।
2: जोड़ी सके ना हम इन चीजों को भी जोड़ सकते हैं बच्चों को कहीं ना कहीं। कि अब जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम ये सकते कि जैसे अब घर में मम्मी या आटा तैयार करती है, तो बच्चे अक्सर इस प्रतिभा को हम निखार सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा आटा दे दे। स्कूलों में भी सिखाया जाता है इसी तरीके से कि अब जैसे क्ले आजकल तो फिर भी हमारे पास है सुविधाओं का, हम उपयोग कर सकते हैं कि क्ले का उपयोग भी कर सकते हैं। घर में मम्मी आटा थोड़ा सा दे दे तो उससे बच्चे सीखते हैं, कुछ खिलौने बनाना सीखते हैं, तो उनकी प्रतिभा का भी इसमें विकास होता है इस तरह से।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहो। एक आपने यहाँ चित्रकारी की, अब एक आटा की बात करें तो एक यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि मानना जो अपनी जो प्रथा थी जो अपना दीवार नंबर बालक ने देता था, रंगोली बनाने की बात हो मानना की बात हो, उना तरीका को भी अपन उनको
2: उपयोग कर सकते। हम उसमें भी ये भी कर सकते हैं कि आजकल जैसे बच्चे चित्रकारी की तरफ तो झुकाव है ही सही, पर ये हमारी जो पुरानी संस्कृति है इसको भी हम वापस से ला सकते हैं। तो ये मांडने जो हम बनाना पहले के जमाने में सिखाते थे वही हम एक बच्चों को कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हैं इसी तरीके से। और ये गर्मी की छुट्टियों का शायद सबसे सही उपयोग रहेगा कि हम अपनी संस्कृति अपनी धरोहर को बचा के रख सकते हैं इसमें।
1: बिल्कुल सही करो कि पुराना जो तरीका छे पुराना जो संस्कृति छे अगर हमका नवी पीढ़ी का जेनू पड़ेगा तो उनका घुट्टी में पिवाड़ देवा। और अगर खेल खेल में जो हम उनका उका पीछे को मर्म भी बताई देवा का जैसे हमने दिवाली का मांडना बनाया तो क्यों बनाया ये छुट्टी नमन, क्योंकि पहले बाद में तो समय नहीं रही तो बालक न था, तो अगर छुट्टी नमन अपन बालक न का ये थोड़ा थोड़ा सा वानगी देता रहवांगा तो समझौता रहवांगा, तो कहीं न कहीं अपना सनातन धर्म का प्रति भी उनको जो वैज्ञानिक तरीको छे या वैज्ञानिक सोच छे या उनको मर्म छे वो उन तक अपन पहुंच ही सकांगा, तो आगे बढ़ी ना उनका जीवन कल्याण भी कारगर है। मिनल जोशी बेन, आप हमारा साथ जुड़िया और आपने इतनी अच्छी हमको जानकारी दी कि अपना बालक न का आज का जो बालक थे वो कल का नागरिक थे और उनका किना तरीका से हम संगठित सुव्यवस्थित करी सकें ताकि वो एक अच्छा से अच्छा समाज को निर्माण करना में अपनी भागीदारी दे सका। आप हमारे से जुड़िया, आपने इतनी अच्छी हमको जानकारी दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहनों। अभी अपन ने अपना नाना नानी होन गर्मी की छुट्टियों को उपयोग कैसे करे एक बारे में जानकारी सुनी। जानकारी दे रही थी मीनल जोशी ने, उनका से बातचीत करी रही थी सुनीता बहनों। आज अपन आम पाक बनावांगा। एका सारू अपना के लागेगो 1 किलो आम, 2 लीटर दूध, 1/2 किलो शक्कर, नींबू, इलायची पीसी हुई, पिस्ता की कतरन, बादाम की कतरन। सबसे पहला अपना के कई करनो है कि जो 2 लीटर दूध है नी ओमें से 1/2 लीटर दूध अलग राखी देनो है, ने जो अपन ने 1.5 लीटर दूध लियो है उखे उबाली ने उमें नींबू को रस नाके देनो है। तो नींबू को रस नाकने का बाद कहीं होएगो कि दूध में फेदरो अलग हो जाएगो ने पानी अलग हो जाएगो, तो उन्हें पानी के निथारी ने वो जो फेदरो फेदरो है उसके अपना के अलग तपेली में राखी देनो है। अब अपना के जो अपना आम है ओका फोतराना छोली ने ओके

टुकड़ा करी ने मिक्सर में उनके पीसी लेना है। वो जो गूदो है ओके भी अपन अलग रखी लांगा। अब कढ़ाई में आम को जो गूदो है वो ने शक्कर के नहाके ने ओके चलाता रहेगा जब तक कि चाशनी जैसो थोड़ो घुली मिली नहीं जावे। ओका बाद उसमें अपनो जो फेदरो अपन ने निकालियो थो नहीं वो नहाके देवांगा ने ओका बाद ओके और अपन गाढ़ो करता जावांगा। जब थोड़ो और गाढ़ो हो जावेगो तो अब उसमें पीसी हुई इलायची नहाके दांगा ने साथेज अपनी जो घी लगी हुई थाली है ओमे इना मिश्रण के निकाली ने रखी दवांगा और ऊपर से पिस्ता ने बादाम की कतरन नहाकी ने एक थोड़ा देर के लिए जमा ने रखी देंगा। तो जैसे ही वो ठंडो होगो यो जमी जावेगो ने देखो अपना आम पाक बनी ने तैयार हुई गयो है ने अब अपन सुनी लेवा यो लोकगीत चिखे गायो है बैंड स्वाति उखले ने।

अभी अपन ने बैंड स्वाति उखले को गायो यो लोकगीत सुनियो ने घड़ी की सुई कह रही है कि कार्यक्रम को बखत हुई चलियो है। तो अपना किसान भाई बहन होन से ला विदा ने केवा राम राम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उस पर कैसा असर पड़ेगा?
3: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है, जो स्टेट एजेंसीज जो फूड ग्रेन्स वितरण करने में लगे हैं, उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी, जो एक स्टेट से जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फूड ग्रेन्स, वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएस या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है। वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे। इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट, जो भी सपोर्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इससे उनका थोड़ा सा पीडीएस में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी इशू है जो डीलर्स का है। डीलर्स का जो रेम्यूनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है, ये तीन जो है जो अडॉप्शन है उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
2: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
4: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है। तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
3: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है, जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है वो जो राइटफुल बेनिफिशरी

0: में वो वीड आउट हो जाएगा, उनको
1: जी
0: निकाल देंगे, उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो
1: जी
0: इरेगुलरिटीज जो होते थे पैटर्न को वो डिटेक्ट करना और होस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें
1: जी
0: कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर ये खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता था उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो
1: जी
0: खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
1: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत, तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
2: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को QR कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका GPS टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
1: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि AI, मशीन लर्निंग, NLP और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
0: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा एआई असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल एआई ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो NLP टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करें, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को। हाँ, उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
1: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं, तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
0: देखिए, चैलेंजेस ज्यादातर जो है, रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और इसके वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अब ये GPS टैग्ड व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा
1: जी,
0: यहाँ से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, या पता, यू कैन मॉनिटर GPS टैग व्हीकल्स कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे होगा AI algorithms, जो AI यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है।

0: है उसी की वजह से प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर QR कोडेड की वजह से वो टैम्पर कोई कर ही नहीं सकते। जो जिस फेयर प्राइस शॉप को जो राशन शॉप के लिए जाना है वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला QR कोडेड कौन से राशन के दुकान में पहुंचा है और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल
1: जी
0: टाइम मॉनिटरिंग जो है ना वेयर हाउस से लेके राशन शॉप की दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया कहाँ पे रुका कहीं पे दिक्कत हुई सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
1: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना NFSA के तहत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स कार्बन एमिशन विल 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट।
1: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और EPOS मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक PDS की बात की गई। और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक PDS ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
0: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आप राशन उठाना चाहिए और उठाने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं
1: जी
0: वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। इस तरह का प्रोविजन अभी है विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं।
1: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
0: हाँ, इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते हैं सोच समझ के करते हैं। और जहाँ तक मैंने PDS इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है
1: जी
0: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके और इवन वेयर हाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा
1: जी
0: और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए और बेनिफिशरीज को टाइम से उनका राशन मिलेगा और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा।
1: जी
0: कि ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा
1: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं।
0: सके।
1: लक्ष्मी जी, सार्थक PDS को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
0: देखिए इसमें तो डीलर्स का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में। तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन्स देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा। वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम है वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करे। एंड
1: जी
0: दूसरा जो स्टेट कॉस्ट इनकर्ड था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन अ मच बेटर वे।
1: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: छह सौ 48 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

नसीबों में नहीं है मिलना तो मलाल कैसा, जब इश्क ही बेपनाह है तो सब्र में सवाल कैसा।

आकाशवाणी इंदौर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिरियाद किया। जुनून इश्क था तो रात कट जाती थी बातों में, सजाए इश्क मिली तो हर लम्हा सदियों जैसा लगता है।

मुझ पे है सैकड़ों इल्ज़ाम, मेरे साथ न चल, तू भी हो जाएगा बदनाम, मेरे साथ न चल। तू नई सुबह की सूरज की है उजली सी किरण, मैं हूँ एक धूल भरी शाम, मेरे साथ न चल।

जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे।

परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समुंदर से मिला, दरिया नहीं रहता।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण

0: करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील

0: की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को

पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं देवता फिल्म का, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं नक्शलियालपुरी का लिखा और खयाम का संगीतबद्ध किया दर्द फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहाँ पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है, 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
1: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
0: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं

0: बांग्लादेश के जहाँ पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहाँ से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इल्लीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की। उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, जो हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पर हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी हैं, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
0: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
0: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है, तो हमको

0: वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टूडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिकोड, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित

0: नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
2: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की। इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
3: देखिये, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स की ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है रूपक, इंदौर का पूरा वैभव और स्थापत्य। प्रस्तुति रविंद्र राले की थी।

0: इंदौर नगर भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश का स्पंदन।
1: इंदौर यानी इंद्रपुर, फिर इंद्रपुर का अपभ्रंश इंद्रपुर बना, जिसे मराठों के आगमन ने इंदौर कर दिया। फिर अंग्रेजों ने ठीक उसी तर्ज पर जैसे दिल्ली का दिल्ली, मुंबई का बॉम्बे, वैसे ही इंदौर का इंदौर बना।
0: आज का इंदौर देखकर क्या इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है?
1: यही कोई मराठों के आगमन के साथ यानी 250 या 300 वर्ष पहले?
0: जी नहीं, आजाद नगर की खुदाई में जो मिट्टी के पात्र और भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार इंदौर नगर का इतिहास लगभग 4500 वर्ष पुराना है।
1: हाँ, इसी खुदाई में प्राप्त वस्तुएं आज भी इंदौर के संग्रहालय में रखी गई हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पके हुए खिलौने, मन के आवासीय व्यवस्था के रेखाचित्र आदि महत्वपूर्ण हैं।
0: इंदौर के इतिहास को समझने के लिए पुरानी इमारतें, छत्रियां, महल, कोठियां आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इंदौर का पुरातत्वीय विश्लेषण कर रहे हैं श्री राम सेवक गर्ग।
2: वस्तुतः इंदौर का पुरातात्विक वैभव बहुत ही अनूठा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अवशेष जो कुछ सर्वेक्षण से हमें प्राप्त हुए हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। सन 1972 में आजाद नगर नामक स्थान पर ताम्रास्म युगीन संस्कृति के अवशेष मिले थे, जो कार्बन डेटिंग से हमें तिथियां मालूम हुई हैं कि 4660 साल पहले यहाँ पर एक बड़ी संपन्न बस्ती विद्यमान थी। वहाँ से कुछ परफोरेटेड एरोहेड्स भी मिले हैं जो विश्व में केवल दो जगहों पर मिले हैं, राजस्थान के एक स्थान पर मिले हैं और तुर्किस्तान से मिले हैं। तीसरा स्थान हमारा आज़ाद नगर इंदौर है जहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। तो ताम्रास्म युगीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं और वो मिले हैं चितावर नामक गांव के प्राचीन बस्ती में, जिसे कुछ लोगों ने माना है और अधिकांश लोगों की यही मान्यता है कि चितावर मीन्स चैत्यवर, यानी अच्छा। श्रेष्ठ चैत्य नाम था वहाँ पर, और उसके अवशेष भी हमें उत्खनन में मिले हैं। बौद्ध सन्यासियों की अस्थियाँ, उनकी मणियाँ और कुषाणकालीन स्तूप के अवशेष भी वहाँ पर मिले हुए हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस स्थान का उल्लेख चिकिताओ नाम से किया है, जो उज्जैन और महेश्वर के बीच में है। संभव है वही चिकिताओ ये चितावर गांव रहा हो जो इंदौर की प्राचीन बस्ती हो।
1: जी,
2: यहाँ पर सर्वेक्षण में आदिमानव के अवशेष भी मिले हैं और नीलगाय इत्यादि के फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म, जिससे पता चलता है कि यह स्थान आदिमानव की भी लीला स्थली रहा है। बाद में हमें 10वीं-12वीं शताब्दी के बहुत से शिल्पखंड मिले हैं और जिस नाम पर इंद्रपुर नाम पर इंद्रेश्वर मंदिर की स्थापना है
1: जी।
2: और ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रकूट राजा इंद्र यहाँ जब उज्जैन विजय के लिए आया था तो यहाँ रुका था और उसने इंद्रेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ये घटना करीब 8वीं शताब्दी की हो सकती है। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि इसका एक क्रम है, इसके पुरातत्वीय वैभव का एक क्रम है जिसकी कुछ कड़ियाँ जरूर अभी नहीं मिल रही हैं, लेकिन वो मिल सकती हैं क्योंकि यहाँ पर जो मुद्राएं मिलती हैं या अवशेष मिलती हैं उसमें हमें राष्ट्रकूटों की मुद्राएं भी मिली हैं, राष्ट्रकूटों के अभिलेख भी मिलते हैं।
1: अच्छा।
2: राष्ट्रकूटकालीन कलाकृतियाँ भी मिली।

0: देखो ये इंदौर की भव्य इमारत,
1: नगर का व्यस्ततम इलाका या यूं कह लें कि इंदौर की हृदय स्थली राजबाड़ा,
0: आज भी उन घटनाक्रमों की यादगार संजोई स्थिर खड़ी।

0: है जिनके थपेड़ों में इसे ध्वस्त करने के अनेक प्रयास किए गए।
1: राजबाड़ा के स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व पर जानकारी हमें दी है श्री प्रकाश परांजपे ने।
2: सन 1747 के आसपास मल्हार राव होलकर ने अपने परिवार के निवास के लिए एक महल की नींव डाली। वह महल यही भव्य इमारत राजबाड़ा है। प्रारंभ में इस महल में परिवर्ती मुस्लिम एवं मराठा स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया था। इस महल का निर्माण 1761 तक जारी रहा। 1818 ईस्वी में मंदसौर संधि के बाद इंदौर को होलकर राज्य की राजधानी बनाया गया और उसी समय राजवाड़ा का पुनर्निर्माण हुआ। इस निर्माण कार्य में राजवाड़ा 5 मंजिल तक बनवाया गया। 1834 ईस्वी में देवी प्रकोप से इसकी 5वीं मंजिल जल गई, जो लकड़ी से बनाई गई थी। इसे तुकोजीराव होलकर द्वितीय के समय पुनर्निर्मित किया गया। 11 अप्रैल 1976 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसे अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की गई और 6 अक्टूबर 1976 को विधिवत अधिग्रहण के पश्चात भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अक्टूबर 1984 में दंगे के समय हुए अग्निकांड में यह जलकर ध्वस्त हो गया।

0: स्थापत्य की दृष्टि से राजपाड़ा मुस्लिम, मराठा और इटालियन शैली का मिला जुला स्वरूप है। इसका पूर्वी द्वार मराठा स्थापत्य का नमूना है और गणेश हॉल कैथोलिक शैली का नमूना। दरबार हॉल के पीछे मल्हारी मारतंड का मंदिर और महल में कभी शीश महल भी हुआ करता था, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी का माना जाता है।
1: कहते हैं कि कभी महल में अनेक चित्ताकर्षक भित्ति चित्र भी थे। संपूर्ण राजबाड़ा उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का नमूना था।
0: हमारी इस धरोहर को हमारी आंखों के सामने 1984 के अग्निकांड में ध्वस्त कर दिया गया। शेष बचा केवल मुख्य प्रवेश द्वार पर बना 7 मंजिली भवन, जिसकी ऊंचाई अब 29 मीटर और प्रवेश द्वार 6.70 मीटर ऊंचा है।
1: इसके ऊपर की 7 मंजिलों में से प्रथम 3 पत्थर से बनी हुई हैं और राजपूत शैली की हैं। 4वीं से 7वीं मंजिल तक पत्थर के साथ साथ लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है, जो मराठा स्थापत्य शैली का उदाहरण है।
0: उस समय के भवन वैभवशाली राजप्रसाद उच्च प्रवेश द्वार के अतिरिक्त खंडहर हो गया था, जिसे मध्य प्रदेश शासन ने काफी हद तक पुनर्निर्मित कर सुंदर उद्यानों तथा नई शैली के स्थापत्य से सुसज्जित करने का प्रयास किया।
1: प्रवेश द्वार के अतिरिक्त होलकर राजवंश के कुल देवता मल्हारी मारतंड की पूजा अर्चना आज भी दरबार हाल के समीप एक कक्ष में होती है। क्षत विक्षत राजबाड़े का मुख्य भाग आज भी अपनी भव्यता और होलकर वंश के गौरव की कथा सुनाता प्रतीत होता है।
0: राजबाड़े से कुछ ही आगे कृष्णपुरा पुल के समीप चंद्रभागा के किनारे पर स्थित हैं होलकर वंश की छत्रियां।
1: कुछ वर्षों पहले दुकानों और अन्य अतिक्रमण के चलते यहाँ कुछ है ऐसा महसूस ही नहीं होता था।
0: विगत दशक में इंदौर के सौंदर्यीकरण के तहत छतरियों का एक तरह से पुनरुद्धार हुआ और सोडियम लाइट के प्रकाश में प्राचीन प्रस्तरों का सौंदर्य जाग उठा।
1: कहते हैं यहाँ 100 छतरियां थीं। छतरियां यानी होलकर वंश के पूर्वजों के समाधि स्थल, जिन पर अधिकांशतः शिवलिंग की स्थापना करके मंदिरों का एक समूह सा बन गया था।
0: इन छतरियों के स्थापत्य और इतिहास की जानकारी दे रहे हैं श्री डीपी पांडे।
2: 18वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मालवा की मराठा कालीन स्थापत्य कला में छतरी वास्तु विन्यास की एक नवीन विधा उभर कर सामने आई है। इन नवीन उपलब्धियों के लिए होलकर नरेशियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। होलकर राजाओं ने प्राचीन मंदिरों की रूपरेखा पर आधारित अपने पूर्वजों की स्मृति में इन छतरियों का निर्माण कराया। इंदौर नगर में छतरियों का निर्माण कार्य अहिल्याबाई होलकर

0: कृष्णाबाई होलकर की छतरी स्थापत्य कला का अद्भुत स्मारक है।
1: और वो देखो सामने नदी के उस पार, वो किसकी छतरी है पांडे जी, आप बताएंगे?
2: जैसा कि आप देख ही रहे हैं खान व चंद्रभागा नदी के संगम पर पूर्वाभिमुखी कृष्णाबाई की छतरी होलकर स्थापत्य उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि कृष्णाबाई होलकर की छतरी के नाम से विख्यात कलापूर्ण स्मारक है। कृष्णाबाई महाराजा संतराव होलकर प्रथम की पत्नी थी। उसने 1811 से 1849 तक राजकीय कार्य में अपना सक्रिय योगदान दिया। इस छतरी में मराठा एवं राजपूत स्थापत्य कला का सामंजस्य है। इसके भूमि विन्यास में गर्भगृह मंडप एवं मुख मंडप है। इसकी योजना पंचरथी है। गर्भगृह की बाह्य दीवारों पर बने हुए देवी देवता भैरव, गजलक्ष्मी, कृष्ण आदि मराठा शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसका शिखर बनाते समय परमार काल में भूमि मंदिरों के शिखर के समान तैयार करने की कोशिश की गई है। प्राचीन मंदिर की तरह ही ये रथ नीचे से ऊपर तक हैं। सबसे महत्वपूर्ण संगमरमर का बना हुआ यह प्रवेश द्वार है जिसको आप देख रहे हैं
3: जी।
2: जिसके सिर दल के ऊपर देवी देवता बने हुए हैं, उसी प्रकार से निर्मित है जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों से उतंग सप्तमातृका पट्ट बनाए जाते थे। इसके सामने 36 स्तंभों पर आधारित वह मंडप स्तंभ कला के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रस्तर स्तंभ मराठा शैली के है, जो कि महत्वपूर्ण में काष्ठ निर्मित हुआ करते थे। गर्भगृह के समीप दोनों लघु कक्ष हैं। इनमें ग्रेनाइट के फ्रेम में संगमरमर की नक्काशी युक्त जालियां हैं। एक कक्ष राजपूत शैली के आधार पर बने हुए है। ये बाईं ओर की छतरी जो आप देख रहे हैं
3: जी।
2: महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय एवं महाराजा शिवाजीराव होलकर की है। ये छतरियां भी मराठा शैली में निर्मित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण शैली आइए, यह है बोलिया सरकार की छतरी। बोलिया परिवार बिठूली बोलिया के वंशज बाजीराव पेशवा के सैनिक अधिकारी थे, जो होलकर के साथ 18वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा आए थे। इस वंश के होलकर परिवार से वैवाहिक संबंध थे तथा शासन में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। चिमनाजी राव बोलिया यशवंतराव होलकर प्रथम की पुत्री श्री भीमा माई बाई एवं गोविंद राव बोलिया का पुत्र था। इसे नदियों के पुल निर्माण के कारण याद किया जाता है। इसकी छतरी का निर्माण 1858 ईस्वी में अस्थियों के सम्मान हेतु किया गया था। इस छतरी की बनावट कृष्णाबाई की छतरी से पूर्णतया भिन्न है। इसका गर्भगृह एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित अष्टकोणीय है, जो राजपूत शैली से पूर्णतः प्रभावित है। इन खंभों के बीच में अर्धमहरावे राजस्थान की आमेर शैली के अनुरूप लगती है। इस छतरी का शिखर नागर शैली का न होकर गुंबदाकार है, जैसा आप देख ही रहे हैं। गर्भगृह में बनी हुई जालियां आज मुस्लिम, मराठा एवं राजपूत शैली के, किंतु इस पर बने हुए राजपुरुषों, जनसाधारण तथा पशु पक्षियों के दृश्य मराठा शैली के स्पष्ट हैं।

0: छतरियों से कुछ दूर स्थित है इस शहर की ऐतिहासिक स्मृतियां, जिन्हें हम लाल बाग में संजोए हुए हैं।
1: इस मार्ग पर चलते चलते मराठों के इष्ट देव पंढरीनाथ का ये मंदिर सन 1818 से 1833 के बीच मल्हार राव होलकर द्वितीय ने निर्मित कराया था। ये मालवी मराठा शैली का मिश्रित उदाहरण है।
0: और ये हरसिद्धि का पुल, इस पुल का निर्माण तुकोजी राव तृतीय ने माँ हरसिद्धि के मंदिर और लालबाग तक पहुँचने के लिए करवाया था।
1: आज का ये जिलाध्यक्ष कार्यालय पूर्व में होलकरों का बंदी गृह और हाथी खाना था।
0: विशाल परिसर में निर्मित अपने सिंह द्वार से अपनी ओर खींचता ये लाल बाग है।
1: इस महल का निर्माण और इसके पुरातात्विक महत्व के बारे में हमें बता रहे हैं श्री आरसी यादव।
2: महाराजा तुकोजीराव होलकर, जिनका राज्यारोहण अंग्रेज रेजिडेंट हैमिल्टन के अथक प्रयास से 1844 ईस्वी में किया गया। यद्यपि उस वक्त तुकोजीराव अल्पवयस्क थे, किंतु उनकी रुचि इस प्रकार के कार्यों में अधिक थी, तो 1854 ईस्वी में वो लालबाग परिसर में आए और यहाँ उन्होंने एक उद्यान बनाने की योजना बनाई। इसके लिए मिस्टर हार्वे को उन्होंने

0: उद्यान शास्त्री नियुक्त किया। मिस्टर हार्वे ने एक ही साल के अंतराल में एक विकसित गुलाब चक्कर बनाया और इससे प्रसन्न होकर महाराजा ने उन्हें राजकीय भवनों का अधीक्षक बना दिया। अधीक्षक बनने के बाद मिस्टर हार्वे ने 1865 के आसपास इस सरस्वती नदी के तट पर इस विशाल भवन की एक नींव डाली। ये काम चलता रहा किंतु 1877 में पानी की कमी के कारण ये काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिसे महाराजा शिवाजीराव होलकर ने 1886 से 1890 के बीच में जो इस पैलेस का उत्तरी भाग है वो उन्होंने निवास कुंज के रूप में निर्माण करवाया, जिसे ओल्ड कोठी कहती है।
1: अच्छा,
0: इसके बाद आगे का जो हिस्सा है जिसे पश्चिमी भाग, ये तुकोजी राव तृतीय के द्वारा 1902 से 1911 के बीच में कंप्लीट करवाया गया। और किंतु इसके जो अंदर का डेकोरेशन है ये संगमरमर लगाया गया है और यहाँ तक ये इसके फर्नीचर वगैरह है वो 1916 से 1911 के बीच में करवाया गया।
2: आधुनिक इंदौर के वास्तविक निर्माता महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय का राज्यारोहण सन 1844 में हुआ।
3: 1853 में लालबाग परिसर की रमणीयता से प्रभावित होकर उन्होंने उद्यान के विकास हेतु मिस्टर हार्वे को नियुक्त किया।
2: परिसर के पश्चिम में निर्मित शिव मंदिर और चंपा बावड़ी के समीप रामपुर कोठी का भी निर्माण कराया।
3: ये कोठी रोहिला नवाब और होलकरों की मित्रता का प्रतीक है।
2: चंपा बावड़ी का निर्माण सन 1836 में मल्हारराव होलकर द्वितीय की स्मृति में हरिराव ने करवाया था। 14 नवंबर सन 1988 को नेहरू केंद्र के रूप में लालबाग महल दर्शकों के लिए खोल दिया गया।

0: श्री रामकृष्ण देसाई जो होलकर स्टेट के इंजीनियर हैं, उनका कहना है,
1: जैसे जो पुराने पैलेस है, जैसे ओल्ड पैलेस है या शिवविलास पैलेस है या सुखनिवास पैलेस है, इनमें लकड़ी का काम ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, लकड़ी के ऊपर आर्किटेक्ट नक्शीकारी ये आपको ज़्यादा देखने में मिलेगी। जो बात माणिकबाग में नहीं है, क्योंकि माणिकबाग जो है ये नए जमाने का बना हुआ है और तरह तरह के जैसे महाराज चाहते थे वैसा उन्होंने काम करा पैलेस में। अलवा की विशेषता ये है कि एक तो ये जो बकिंगम पैलेस है लंदन में, उस स्टाइल पर बना हुआ है। आपने एक बड़ा गेट देखा होगा, बस उसी की कॉपी है ये। इसको स्पेशली वहाँ बनाया था लंदन में, और रतलाम से स्पेशली ट्रेन से यहाँ लाया था उसको, ये गेट को। अच्छा। और ये गेट फिक्स करने वाला भी अभी मौजूद है। अच्छा। हाँ, लालबाग पैलेस में खासियत ये है कि जितना भी काम हुआ है, मोस्ट ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस और संगमरमर का काम हुआ है। अभी आपने देखा होगा ये हॉल, दरबार हॉल, कि जिसके अंदर सब करेरा मार्बल यूज हुआ इटली का, तो ऐसा मार्बल आजकल कहाँ मिलता है। खासियत यही है इसके अंदर कि करेरा मार्बल ज़्यादा यूज़ हुआ है इसके अंदर, और जितकी गच्ची ऊपर भी जो काम हुआ है ना, या हॉल के अंदर भी, सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है। ये खासियत लालबाग पैलेस की।

0: ये इंदौर कोट है जो एक मैदानी किले की तरह बना हुआ है। होलकर राज्य का ये सैनिक केंद्र था। इसके समीप आयुक्त कार्यालय जो मोती बंगला कहलाता है, ये होलकर राज्य का सचिवालय हुआ करता था।
1: ये इंदौर का प्रसिद्ध गांधी हॉल है। सन 1884 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह की स्मृति में इस हॉल का निर्माण किया गया था, जिसे एडवर्ड हॉल भी कहते हैं।
0: इस हॉल को इंडो गोथिक शैली में बंबई के वास्तुविद मिस्टर स्टीवेंसन की देखरेख में निर्मित किया गया था।
1: कालांतर में इसे गांधी हॉल के नाम से जाना जाने लगा है। हॉल के अंदर ऊपर स्थित टावर में चारों ओर घड़ियां होने से तथा इन घड़ियों में प्रत्येक घंटे पर घंटा बजने से आम जनता इसे घंटाघर के नाम से भी जानती है।
0: 1818 ईस्वी में इंडो गोथिक शैली में बनी एक और इमारत रेसिडेंसी कोठी इंदौर की प्रमुख धरोहर है।
1: मिस्टर वेलेजली इंदौर के पहले रेसिडेंस नियुक्त किए गए थे। उन्हें भूमि और भवन सामग्री होलकर राजा ने दी। ये कोठी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विशेष चर्चित रही।
0: 1871 में महाराजी तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने शेरपुर पैलेस के नाम से एक भवन जो बहुत आकर्षक पत्थर से निर्मित का निर्माण शुरू करवाया।
1: किसी कारण से ये भवन पूरा न हो सका, इसलिए आज आम जनता की भाषा में इसे फूटी कोठी कहते हैं।
0: 1883 में निर्मित सुखनिवास पैलेस अब कैट का कार्यालय है।
1: माणिक बाग पैलेस 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुकोजी राव होलकर तृतीय द्वारा बनाया गया था।
0: उस समय ये संपूर्ण रूप से अकेला वातानुकूलित महल था। सहकारी बाजार, ऑफिसर्स क्लब, 1901 में महाराजी शिवाजी राव स्कूल 1918 में निर्मित हुआ, जिसका उद्घाटन 7 अगस्त 1918 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था।
1: राजबाड़ा चौक के समीप स्थित लाइब्रेरी सन 1854 में निर्मित हुई और मध्य भारत की ये प्राचीनतम व सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी मानी गई है।
0: आज का पुलिस अधीक्षक का कार्यालय महारानी सराय के नाम से 1907 में बंबई की फर्म मैसर्स चार्ल्स स्टीवेंसन एंड कंपनी ने बनाकर पूर्ण किया था।
1: यशवंत निवास यानी लाल कोठी सन 1907 में बनाई गई। इन इमारतों और पुरातत्वीय सामग्री के रखरखाव के संबंध में बता रहे हैं सलीमुद्दीन सिद्दीकी।
2: जो कलेक्शन जो किए जाते हैं साइट से, तो उसमें ये रखना चाहिए कि कलेक्शन से कुछ स्पेसिमेन सील ट्रांसफर करना चाहिए म्यूजियम में, बाकी साइट को में ही डिस्प्ले करना चाहिए।
3: अच्छा।
2: क्योंकि जो आर्टिस्ट ने जिस वातावरण में जो चीज बनाई है, उसका एटमॉस्फियर, उसके चारों तरफ का जो मतलब जगह रहती है, वो जैसे नदी है और बागीचा है और जंगल है और उसी के अंदर उसने वो बनाया, तो उसका इम्पोर्टेंस असली वहीं पर होता है। जैसे हिंगलाजगढ़ का कलेक्शन, हिंगलाजगढ़ में बहुत से मंदिर मिले, लेकिन उन मंदिरों की जो मूल जगह है
3: जी,
2: वो उसको हमने सारा कलेक्शन ट्रांसफर करने के बाद उसको नष्ट कर दिया। अब उस साइट पर जाने से उसका कुछ पता नहीं चलता है।
4: नहीं, बस सिद्दीकी साहब, यहाँ एक प्रश्न बहुत विचारणीय बात यह है कि यदि हम इन चीज़ों को बाहर रखें तो उनका जो सुरक्षित रह पाना, जैसा कि हम देखने में सुनने में हमें आता है कि बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से चली जाती हैं, वो सुरक्षित नहीं रह पाती, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उसी के लिए ही जो साइट म्यूजियम नाम से जो चीज़ें बनी, जैसे कहीं पर भी जो साइट अच्छी मिलती है हमको, तो वहाँ पर साइट म्यूजियम बना करके स्टाफ रखा जाता है, सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता है
3: जी।
2: लेकिन जो चीज़ जहाँ पर भी है, जो प्रतिमा या मंदिर या कोई भी पोर्शन है, वो अपनी जगह पर अगर मिलता रखा रहता है, तो वो ज़्यादा समझ में पब्लिक को आता है।
3: अच्छा।
2: और कलाकार की अभिरुचि और कलाकार की कला जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है। साइटें बहुत सी ऐसी होती हैं कि जैसे जो मंदिर हमारे मोनोलिथिक मंदिर जो हमको मिला था, वो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दे करके उसका सब क्लियरेंस कराया था, साफ कराया था।
4: किस स्थान पर था?
2: और वो स्थान क्या था? बासवी स्थान।
3: अच्छा।
2: बासवी ग्राम है, नदी किनारे है, वो चंद्रभागा कहलाती है। नदी जहाँ से टर्न होती है वो चंद्रभागा कहलाती है, और उस जो टर्निंग पॉइंट में अक्सर जो भी टर्निंग पॉइंट होगा नदी का, वहाँ पर जरूर कोई ना कोई मंदिर या कोई ना कोई चीज मिलती है, ऐसा मतलब वो है, अनुभव है ऐसा। तो वहां पर ही वो साइट में मिला था, तो पूरा शिखर तक पूरा जमीन के अंदर था।
4: अच्छा।
2: सिर्फ ऊपर का कलश का थोड़ा सा पोर्शन दिखता था, वो ऐसा लगता था जैसे कि कोई शिव लिंग जो है वो रखा हुआ है। जब उसको साफ कराया गया तो वो पूरा शिखर निकला, फिर उसके बाद नीचे का जो है मंडप और अंतराल और उसका गर्भगृह वगैरह सब पूरा निकला, सब एक ही पत्थर से काट के बनाया गया था।
4: जी।
2: उसके ऊपर जो चीज मिली खास तौर पर वो ये है कि एक कलश है और उस पर जो है शेर, चार शेर जो है उसका, उसको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, और एक हाथी जो है वो चारों पैर फैला करके गिर पड़ा है।
4: अच्छा।
2: और वो करीब करीब मतलब ऐसा दिखाया गया जैसे वो मरने वाला है।
4: तो कितना पुराना आपके हिसाब से?
2: तो
4: वो
2: अब उसके हिसाब से ये होता है कि जो हर्ष के टाइम का सिंबल है हाथी
4: जी,
2: और साउथ इंडियन जो आए थे
3: चालुक्य,
2: तो उनका सिंबल है सिंह। तो चालुक्यों की विजय हर्ष के ऊपर जब हुई थी तो उस जमाने में ये टेंपल बनाया गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ये डिस्प्ले विचित्र है और कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे कहीं पर भी। ये जो दो चीजें देखने को मिलती हैं, सिंह का सिंबल क्यों बनाया उन्होंने कलश का, और हाथी को इस तरह से क्यों बनाया, उसका मतलब पराजय की का वो सिंबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन उसके बारे में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ले लिया है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना वर्क है कि वो इस छोटे से चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस।
4: ये जो मंदिर है आज हमारे संग्रहालय में ना होकर कहाँ?
2: ये सेंट्रल आर्कियोलॉजी के अंदर अंडर में चला गया है। अगर ये प्रोविंशियल आर्कियोलॉजी के अंडर में होता तो आज उसका कुछ और ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया जाता।
0: आज आवश्यकता है इन इमारतों को अतिक्रमण, चोरी, क्षरण और प्रदूषण से बचाने की, वरना हमारी ये धरोहर देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूपक, इंदौर का पूरा वैभव और स्थापत्य। प्रस्तुति रविंद्र राले की थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है हृदय रोग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सुयश तापेड़ कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल समय सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 28 मई 2026 यानी कल समय सुबह 10:32 से सुबह 11:02 तक। विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 KHz पर आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी अश्विनी भिड़े का देश पांडे का ख्याल गायन, राग है बिहाग।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे का ख्याल गायन, राग था बिहाग। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन

0: कार्यान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रूपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली चंडीगढ़ राजस्थान छत्तीसगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश कोंकण गोवा ओडिशा पंजाब तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।